एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। स्पेन के

हेनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को

0: ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की। स्वतंत्रता के लिए अनोखी वीर शहीदों ने की थी क्रीड़ा, भारत माता की जय कहते झेल गए थे फांसी की पीड़ा। क्या हम सब भूल गए हैं वीरों के उन बलिदानों को, हम भूले ना भुला पाएगी इस देश की सतरंगी वीणा। आइए सुनते हैं ये देश वंदना समूह स्वरों में।

ये देश वंदना अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में, और आइए अब आरंभ करते हैं ईश वंदना। सकल विश्व के मालिक से हम करते हैं प्रार्थना कि वे चाहे सुख दे या पीड़ा दे, याचना बस इतनी है कि हम पर कृपा बनाए रखें और सभी परिस्थितियों में जगत से साथ चलने का और यहाँ पर कल्याण करने का ही रास्ता हमें दिखाएं।

ये प्रार्थना अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों के स्वर में भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में। आइए अब सुनते हैं ये भजन।

बेला सुलाखे और साथियों के स्वर में ये राम और कृष्ण को समर्पित भजन आप सुन रहे थे। और आइए भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में लेते हैं कल्याणकारी शिव का नाम इस भजन के साथ, जिसे गाया है राघव राजा ने।

0: सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं। देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। खेती की लागत कम करो, इस विषय पर सामिक सुझाव आज आप सुनेंगे। जानकारी का वाचन किया है अभिनव गौरहा ने।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। हम जानथन भाई के भारत हमर देश हमर राज एक कृषि प्रधान देश है, राज आए और देश के बढ़त आबादी खेती में निर्भर है, लेकिन वर्तमान समय में खेती के लागत लगातार बढ़त जाते। रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, बीज और मजदूरी ला झन पूछा, ये सब के बढ़त दाम किसान के आय ला प्रभावित करते। ऐसा समय में कम लागत वाले खेती के तकनीक किसान मन पर लाभदायक साबित हो सकत है। ये तकनीक ला अपना के किसान खेती के खर्चा ला कम करके ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकत है और अपन आय ला बढ़ा सकत है। कम लागत वाले खेती के सबले महत्वपूर्ण आधार होते माटी के परीक्षण। कतको किसान बिना माटी के जांच करवाए खाद और उर्वरक के उपयोग करते, जेखर से अनावश्यक खर्चा बढ़ जाते। माटी परीक्षण से खेत में पोषक तत्व के सही जानकारी मिलते और किसान आवश्यकता अनुसार ही खाद के उपयोग करते, एखर से लागत कम होते और फसल की गुणवत्ता घलो बेहतर होते। खेती में जैविक खाद के उपयोग कम खर्चा के प्रभावी उपाय आए। गोबर के खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत जैसन जैविक खाद किसान अपन खेत या घर में आसानी से तैयार कर सकत है। एखर से रासायनिक खाद में निर्भरता कम होते और माटी के उर्वरता लंबा समय तक बने रहते। जैविक खेती से उत्पादन की गुणवत्ता घलो अच्छा होते और पर्यावरण ला नुकसान घलो नहीं पहुँचे। बीज उपचार भी कम लागत के महत्वपूर्ण तकनीक आए। बुआई से पहले बीज ला ट्राइकोडर्मा, एजिटोबैक्टर या गौमूत्र से उपचारित करे से फसल में बीमारी मन के खतरा कम हो जाते। एकर से अंकुरण अच्छा होते और बाद में दवाई मन से होए वाले खर्चा कम हो जाते। कम खर्चा में स्वस्थ फसल प्राप्त करे बड़े बड़ सटीक तरीका माने जाते। पानी के बचत बर किसान भाई मन ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली ला अपना सकत है। जौन किसान भाई मन साग सब्जी के खेती करते, ये तकनीक से कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होते। खासकर सब्जी और बागवानी फसल में ड्रिप सिंचाई बड़ लाभदायक है। जहां आधुनिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां किसान मल्चिंग, मेड़बंदी और वर्षा जल संरक्षण जैसन तकनीक के उपयोग कर सकते हैं। एकर से खेत में नमी बने रहते और सिंचाई के खर्चा कम होते। फसल चक्र और मिश्रित खेती, एला अपनाए से भी लागत घटते। लगातार एके फसल लगाए से माटी कमजोर हो जाते और रोग कीट के आक्रमण बढ़ जाते। अगर किसान दलहनी, तिलहनी और अनाज के फसल के चक्र ला अपनाए तो माटी के उर्वरता बने रही। मिश्रित खेती में एक संग दो या अधिक फसल लगाए से जोखिम हाँ कम होते और अतिरिक्त आय प्राप्त करे जा सकते। कीट और रोग नियंत्रण पर किसान मन ला जैविक और देसी उपाय के उपयोग करना चाहिए।

0: निमास्त्र, दसपर्णी अर्क और ब्रह्मास्त्र जैसे जैविक घोल कम खर्च में तैयार करे जा सकत है। ये सब मन हा फसल ला नुकसान पहुंचाए वाले कीट मन ला नियंत्रित करे मा किसान के मदद करते और रासायनिक कीटनाशक मन ऊपर जिन खर्चा हम करथन ओह कम हो सकत है। खेती मा सामूहिक कृषि यंत्र के उपयोग भी लाभदायक होते। छोटे किसान महंगा कृषि यंत्र खरीदे के बजाय समूह बना के किराया में ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर या पावर स्प्रेयर के उपयोग कर सकते। एकर से खेती के खर्चा कम होते और समय के घलो बचत होते। आज मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से किसान मौसम के जानकारी, मंडी भाव और नवा नवा कृषि तकनीक के जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते। सही समय में सही खेती संबंधी निर्णय लिए से नुकसान कम होते और लाभ बढ़ते। तो किसान भाई हो, ये सब तकनीक मन ला अपना के हम अपन खेती के खर्चा ला कम कर सकत हन। राम राम, जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। वाचन स्वर अभिनव गौर का था। विषय था खेती की लागत कम करें। FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। प्रातः की 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर राजेंद्र काचरू और चतुर सेन की है। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

श्री राम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण अभी हम कर रहे थे। आज का अंक आपने सुना राजेंद्र काचरू और चतुर सेन की स्वरों में, सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है जिसे आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नव विहान। आज के नवविहान फ्लैगशिप कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कौशल भारत मिशन के बारे में। श्रोताओं, कौशल भारत मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई सन 2015 को आरंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल यानी कि इंडस्ट्री और रिलेवेंट स्किल्स में प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़े और युवा आत्मनिर्भर बढ़ सके। इसका उद्देश्य सन 2022 तक 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करना था। देश में कुशल कार्यबल की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में कौशलों में शिक्षा और प्रशिक्षण देना रखा गया था। इसकी मुख्य योजनाओं में शामिल किया गया था 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा सके। यह योजना गांव और शहरों दोनों में विकास पर जोर देती है जिसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हस्तशिल्प सिखाना, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना भी इसमें फोकस रखा गया था। यह योजना न केवल प्रशिक्षण देती है बल्कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणित भी करती है जिसमें युवाओं को नौकरी पाने में आसानी हो। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई ट्रेनिंग लेता है तो उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे नौकरी पाने में आसानी होती है, क्योंकि हाथ में हुनर बहुत बड़ी बात होती है और इससे किसी भी जगह पर आसानी से काम मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया था जो कि व्यावहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से हाथ में और अधिक सफाई आती है और इसका लाभ हमारे देश के युवाओं को मिलता है। विदेश में नौकरी के अवसरों के लिए उड़ीसा राज्य में पहला कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया था और इस मिशन को 10 वर्षों में कौशल भारत में से विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए युवाओं के आत्मनिर्भरता को नया रास्ता दिखाना रखा गया है। कौशल भारत मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका लाभ सभी युवाओं को अपने अपने कार्यों के लिए अवश्य उठाना चाहिए।

चूंकि कौशल भारत मिशन युवाओं पर केंद्रित है, तो इसमें 5G, AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है। 15 से 59 वर्ष

वर्ष के युवा या भारतीय नागरिक इसमें निशुल्क पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी कौशल सीख लेते हैं। 3 से 4 महीने में प्रमाण पत्र दिया जाता है और इसका लाभ वे अपने जीवन यापन में कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हेल्थ केयर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनिंग, सिलाई ऑपरेटर और ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल फोटोग्राफिंग, वीडियो और साउंड एडिटिंग जैसे कोर्स रखे गए हैं। ये सभी कोर्स बिल्कुल मुफ्त होते हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद प्लेसमेंट में सहायता मिलती है। इन कोर्स के लिए स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से या फिर नजदीकी कौशल विकास केंद्र PMKVY सेंटर पर जाकर युवा आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नवविहान, कौशल भारत मिशन पर हमने आपको जानकारी दी। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः की 6:50 हुए हैं। समय हो चला है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का। पहले सुनिए इसी सभा के कार्यक्रमों का विवरण। तुहरकोट हमर गीत, ये फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 10 बजे से। प्रस्तुति महावीर बरगाह की होगी। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई सुनिएगा सुबह 8:30 से। इसमें आज पंचराम मिर्जा और साथियों के गाए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही भागवत सप्रे और साथियों के गाए लोकगीत भी आप सुन सकेंगे। आज सुबह कार्यक्रम हम पेश करेंगे 7:05 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:30 सुनिएगा कार्यक्रम यादों के झरोखे से, और 10:30 पर लेकर आएंगे फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाता है दिन में 11:00 से 11:30 के बीच।

प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाते हैं सुबह 9:55 और 11:55 पर। संध्याकालीन प्रसारणों में आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे रोज की तरह प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:35 पर युवा दोस्तों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज की बात का विषय है जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी। साथ ही क्रम होगा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की। 7:30 बजे से शाम 7 बजे से आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुनने का शेष भाग, जिसे हम शुरू करते हैं शाम 6:20 से। 7:20 पर आज ग्राम सभा में गोठ बात होगी वानिकी फसल की नर्सरी और रोजगार विषय पर। इसके अलावा एक भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसमें डॉक्टर एकता ताम्रकार ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन पर जानकारी देंगी। आपसे भेंट करेंगे वैशाखु भैया। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम में, और सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे, जिसमें जावेद बशीर के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत और गजलें हम आपको सुनवाएंगे।

हम अपने श्रोताओं को याद दिलाते हैं, आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुति महावीर बरगाह की होगी। 8:30 बजे सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई। 5:35 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात होगी जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी के बारे में, साथ ही क्रम होगा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी। ग्राम सभा का कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:20 से, जिसमें आज वानिकी फसल के नर्सरी और रोजगार विषय पर

0: रूट बात होगी, साथ ही भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, गीत संगीत भी शामिल होगा और मौसम मंडी का हाल भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में। 11 बजे से 11:10 तक हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से हम करते हैं, उसके बाद हमारी सभा का समापन होता है। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ क्षणों में संस्कृत और 7 बजे हिंदी में समाचार क्रमशः आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केंद्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुंभाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भंडारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः।

0: श्री हेमंत शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हेमंत विश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी

0: नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुति कार्यक्रम आज सुबह।

लेकर अपनी बातों का पिटारा, गीतों का सहारा, कुछ संदेश और सूचनाओं के साथ हम हाजिर हैं आज सुबह का ये अंक लेकर। सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। और बात आरंभ इससे करते हैं, अणु तुम्ही हो, विराट तुम्ही हो, जीवन का आधार तुम्ही हो। मित्रों, ये कोई कोरी प्रार्थना नहीं, बल्कि वो सत्य है कि ब्रह्मांड का हर कण अणुओं से बना हुआ है। यही बेसिक यूनिट के रूप में इतने सूक्ष्म होते हैं जो आपके एक बाल की चौड़ाई में 10 लाख कार्बन एटम समा सकते हैं, और 5 करोड़ ठोस परमाणु मिलकर सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा ही बना पाते हैं। श्रोताओं, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी से हवा, पानी, ग्रह, उपग्रह और पूरा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। बस अरबों सालों का फर्क है समय का, और साथ ही इसमें मौजूद रचना, मात्रा और योग अलग अलग हो सकते हैं। पहले एटम को अविभाज्य माना जाता था, परंतु अब उसे भी विखंडित करने की विधि निकाल ली गई है। कुछ भारी तत्वों के विशेष परमाणुओं को चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश तरंगों की तीव्र गति से बमबारी की जाती है, और इससे नाभिकीय विखंडन होता है, परमाणु में विखंडन होता है। ऐसी वैज्ञानिक खोज मानव ने कर ली है, जिससे सृजनकारी ऊर्जा भी हमें मिल रही है, तो विनाशकारी परमाणु बम भी हम बना चुके हैं। और 11 मई भारतीय इतिहास में एक अत्यंत गौरवशाली दिवस है, जो मुख्य रूप से पोखरण परमाणु परीक्षण यानी कि ऑपरेशन शक्ति के नाम से सफल परमाणु संपन्न देश घोषित किए जाने की उपलब्धि हमें याद दिलाता है। और इसे आज भी हम हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1998 को 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनमें साथ साथ में और भी रचनात्मक कार्य कर रहे थे। उन्हीं दिनों हंसा 3 नामक पहला स्वदेशी विमान का परीक्षण सफल हुआ था, और त्रिशूल नामक मिसाइल को कम दूरी की मारक क्षमता के साथ देश को समर्पित किया गया था। यानी 1998 का वो दिन भारत की टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों का दिन था, जिसे 11 मई को वैज्ञानिकों को आज भी उत्कृष्टता, उनके कार्यों के लिए सम्मान देने और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कार्यक्रमों के, नवाचार के, तकनीकी के, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, उसे सुगम, सहज बनाने के लिए सम्मानित किया जाता है, मनाया जाता है। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 2000 में हमारे देश के 1 अरबवे नागरिक, जिसका नाम आस्था रखा था, उस बच्चे का जन्म हुआ था, और ये भी खुशी की बात है। परंतु सीमित संसाधनों के साथ भारत की बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं धरती पर बोझ डाल रही है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आज हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ पूरे विश्व में संसाधनों के लिए, धरती के, जमीन के टुकड़ों के लिए, पेट्रोल, डीजल, सोने, चांदी जैसे धरती से मिलने वाले उपहारों के लिए न सिर्फ युद्ध हो रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा बात बिगड़ने लगी है। इस पर हमें विचार करना होगा और सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और अपने आने वाली भविष्य में पीढ़ियों को क्या देकर जाने वाले हैं। बहरहाल, पोखरण पर एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाई गई थी, फिल्म बनाई गई थी, उसी का प्यारा सा गीत आज सुबह में हमने आपके लिए सजा के रखा हुआ है। आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

केसर यो दिन ये आयो, सूरज सा चमकीलो शुभ दिन आयो। जी हाँ श्रोताओं, भारत की वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रगति को याद करते हुए साथ ही साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की आज भी आवश्यकता है और इसके लिए हर युवा आगे आए, सबके सब मेहनत करें और बड़े बड़े सपनों के साथ भारत को आगे बढ़ाएं। वैसे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम भारत को परमाणु शक्ति बनाने के साथ साथ वैज्ञानिकों के प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आज ही क्यों? भारत भूमि तो सदा से ही ज्ञान की धरती रही है। यहाँ चरक, सुश्रुत, भरत, जैमिनी, कणाद, पिपलाद जैसे ऋषियों मुनियों के लिए लिखे हुए इतने शास्त्र हैं जिन्हें हमें ज्ञान का भंडार समाया हुआ मिला हुआ है, जिनमें ज्योतिष, खगोल, भूगोल, ज्यामिति, दर्शन, संगीत, औषधि और धातु विज्ञान यानी कि हर तरह का विज्ञान समाहित है। शून्य की खोज, दशमलव पद्धति का आरंभ और साथ ही साथ ये भी बताना कि साल की कितनी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा, कब कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कौन सी तिथियों पर ज्वार भाटा आएंगे और समंदर विकराल रूप लेगा, ये सभी भविष्य की बातें हम पहले से ही बता पाते हैं हमारे कैलेंडर्स को देखकर। श्रोताओं, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से बाद में सिद्ध घोषित किया गया, लेकिन पहले से ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इनकी खोज बहुत पहले से हो चुकी थी। हाँ, ये मान सकते हैं भाषा तब अलग थी, शब्द अलग हो सकते हैं और रासायनिक सूत्रों का लिखने का तरीका बिल्कुल अलग ही रहा होगा। जैसे नवग्रहों का राजा सूर्य है जो स्थिर है और इसके सात घोड़े होते हैं जिन्हें सात रंगों का प्रतीक माना गया। समय के मापन

के लिए प्रहर, क्षण, निमिष जैसे इकाइयां भी वर्णित हैं, जिनमें एक से भी छोटी इकाई यानी कि पूर्णांक से भी छोटी इकाई मापने के लिए दशमलव पद्धति का इजाद की गई थी। श्रोताओं, जब हम अन्य सभ्यताओं के बारे में बात करें तो वहां पर जितनी प्रगति नहीं हुई थी, और जब वो हमारे भारत आते थे तो यहां पर गुरुकुलों, आश्रमों की व्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिनमें लाखों की संख्या में किताबें भरी हुई थी और उनमें ज्ञान का भंडार था। वे यहां ज्ञान अर्जित करने आते थे और सिर्फ आशीर्वाद नहीं, जीवेत शरदशतम यानी कि 100 वर्षों की आयु जीने के तरीके के साथ साथ उम्र के चार पड़ाव और आश्रमों में समयानुसार कब कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी पूरी जानकारी बच्चे सीखते थे, और बड़े होते तक हम ये सब सीखते ही रहते थे। गुरुकुल में ही 25 वर्ष की आयु तक जीवन यापन के लिए हाथ का हुनर, स्वयं का रक्षण, परिवार के साथ साथ प्रकृति का पोषण संरक्षण भी सिखाया जाता था। मित्रों, शिक्षा के साथ तकनीकी और संयम के साथ शक्तिशाली बनना हम तब भी सीखते थे और ये सब आज भी है। जी हाँ, हम सब AI के डिजिटल युग के जीवन जी रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, खाना, खरीदारी, लेन देन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, परंतु कहीं ना कहीं प्रकृति का साथ और अपनों का हाथ छूटने लगा है। कई माता पिता बहुत व्यस्त हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है और कौन सी संगत में आजकल रह रहा है। तो कहीं बच्चे ही इतने सक्षम और एडवांस हो चुके हैं कि उन्हें कुछ सुनना समझना ही मुश्किल हो रहा है। श्रोताओं, जहां हमें गर्व होना चाहिए कि माता पिता दोनों कामकाजी हैं और घर अच्छे से चलाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, या फिर हमारा बच्चा विदेशों में लाखों का पैकेज पा रहा है, अच्छी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, उसके बजाय ये आम घर की शिकायत बन चुकी है कि हमें हमारे पास लोगों को देने के लिए, अपनों को देने के लिए समय ही नहीं बचता। एक दूसरे का ख्याल रखने की बातें हम भूलते जा रहे हैं, बल्कि अपने में ही एकल परिवार के लिए कुछ करने की बस जद्दोजहद चली आ रही है, उसमें कोई अपनापन और प्रेम थोड़ा कम होते जा रहा है। श्रोताओं, ऐसे हम अखबारों में, मीडिया में कई बार देखते रहते हैं, प्रसंग भी सुनते हैं, और आपने भी देखा होगा कि बच्चों और किशोरों में मोबाइल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एडिक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि उससे अब हानि होने लग गई है, और यही हमें इशारा कर रहा है कि अब सचेत हो जाएं और इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बना लें, प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ कर रहे हैं। श्रोताओं, युवाओं में बढ़ती हुई चैट देखने की करने की आदत, रील देखने की आदत या फिर ऑनलाइन गेमिंग हमारे लिए आर्थिक नुकसान के साथ साथ चिड़चिड़ेपन का कारण और अवसाद का कारण भी बन चुकी है। वहीं बुजुर्गों में इसकी कमी से भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार साइबर ठगी का शिकार होकर बुजुर्ग अपने जीवन की पूरी जमा की हुई पूंजी भी गंवा देते हैं और उसे लुटा देते हैं, और ऐसा करने वाले ही भी साइबर के पंडित ही होते होंगे या फिर जो जानकार होते हैं वो ठगी के कारण भी ढूंढ लेते हैं। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि हम सक्षम बने और साथ ही साथ सचेत भी हों, जागरूक भी हों, अपने बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, कला, प्रकृति और सृजन में पारंगत बनाएं, साथ ही साथ एक दूसरे को समय देना, सहयोग देना, सम्मान और आदर के साथ साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करना भी एक अच्छा उपाय है। हम स्वयं भी ऐसा करें, तभी तो अनुकरण की आशा अपने बच्चों से कर सकते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही बच्चे जल्दी सीखते हैं। और अगर हम बात करें कि ये सब चीजें तो हमें बुजुर्गों की सीखों में, हमारे मंत्रों में, हमारे ग्रंथों में पहले से लिखी हुई मिली हुई हैं, जो कि आज भी प्रासंगिक है। परित्राणाय साधुना या फिर अति सर्वत्र वर्जयेत, सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम, ये सभी मंत्र हमेशा से हम सबको याद हैं और बार बार सुनने को मिलते हैं, और ये प्रासंगिक आज भी है। बस आवश्यकता इसमें यह है कि हमें अपने जड़ों से जुड़ना होगा, हमें प्रकृति से जुड़कर उसके संरक्षण संवर्धन के साथ साथ ये ध्यान रखना होगा कि एक पल भी बुरा व्यवहार, बुरा विचार हमारे मन में न आए और न ही एक क्षण व्यर्थ जाए, इसे हम रचनात्मक और सृजनकारी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करें। चलिए प्यारा सा गीत कार्यक्रम में सुन लेते हैं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे आज के ट्रैफिक अपडेट्स।

जी हाँ बिल्कुल, हम सब चाहें तो कर सकते हैं मिलजुल कर धरती पर जीवन लीला। पानी पवन तरु सब मिलकर हरते हैं जगती की पीड़ा। भेद नहीं प्रकृति कभी करती, भेद नहीं प्रकृति कभी करती, सबको एक बराबर देती। समस्वर में ही सदा गूंजती मानस पट पर मंगल वीणा। जो वीणा को साध सकेगा साथ उसी का दे

0: की वीणा, मानस पट पर मंगल वीणा, मानस पट पर मंगल वीणा। श्रोताओं, हम चाहें तो पूरे देश में, विदेश में, जहाँ पर भी हमसे हो सकता है, इन बातों को बोल सकते हैं कि सारी धरती हमारी परिवार जैसी है और इसमें युद्ध नहीं बल्कि शांति होनी चाहिए, आगे बढ़ने के रास्ते होने चाहिए। बहरहाल, हम भी बढ़ते हैं आगे और कार्यक्रम आज सुबह में सुना देते हैं आपको आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
1: नमस्कार, उमाशंकर पांडे का। लीजिए, प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही शहर से बाहर उत्तर में रतनपुर मार्ग तो दक्षिण में रायपुर मार्ग, पूर्व में मस्तूरी तो पश्चिम में तखतपुर मार्ग में इस प्रकार बिलासपुर की चारों दिशाओं की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, यद्यपि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी हम यदि छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो सड़क दुर्घटना में बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रायः बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। सबसे पहले तो अपने वाहन की गति में संयम रखें, क्योंकि प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। इसी प्रकार आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं, इसी बीच दाहिने या बाएं आपको मुड़ना है तो मुड़ने से पहले हाथ से या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर देवें। दिन के समय धूप में इंडिकेटर लाइट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए दिन में हाथ से ही मुड़ने का संकेत देवें, तभी अपना वाहन मोड़े। दोस्तों, जब आप कार जैसे वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, कहीं रुकना पड़े तो हमेशा अपने बाएं तरफ का ही दरवाजा खोलकर उतरना चढ़ना करें, दाहिने तरफ का नहीं। कार जैसे वाहन में सफर करते समय विशेषकर युवा वर्ग बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाकर मस्ती करते हुए चलते हैं, इससे पीछे से आ रहे वाहन का आभास इसके चालक को नहीं हो पाता और ओवरटेक करते समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी मस्ती न करें, ये घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ चालक वाहन चलाते हुए वीडियो देखते हुए चलते हैं, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जब सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की कतार लगी है, वो अभी खूनी रफ्तार में। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन सावधानियों को हमेशा अपनाकर चलें, ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: और बस इसी के साथ आज सुबह कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्त। तो आपके हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। नमस्कार।

सुबह अभी आप सुन रहे थे FM 103.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:30 हुए हैं। पेश है यादों के झरोखे से। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म भाई भाई से। गीता दत्त की मीठी सी आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत निर्देशन है।

गीत आदित्य की आवाज़ में सुरीले सा ये गीत आपने सुना फिल्म भाई भाई से मदन मोहन के संगीत निर्देशन में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से। इस गीत में आवाज़ें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है शंकर जयकिशन।

नई चेतना आई है, बदलाव की बयार लाई है। हिंसा को ना कहें, सम्मान को हाँ कहें। महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, जीरो टॉलरेंस यही है हमारी तैयारी। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना, नया भारत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रात और दिन से। मन्ना डे के साथ लता मंगेशकर की आवाजों में इस गीत को आप सुनेंगे। शैलेंद्र के लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन। फिल्म का नाम है रात और दिन।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: कल भी नंबर वन, आज भी बॉस है आकाशवाणी। इस संदेश के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यादों के झरोखे से का अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है गाइड। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुनेंगे, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे गाइड फिल्म से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला युगल गीत, जिसे आशा भोसले के साथ महेंद्र कपूर ने गाया है। साहिर लुधियानवी के लिखे हुए बोल हैं, संगीतकार हैं रवि। फिल्म का नाम है वक्त।

महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और आइए अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुन लेते हैं, गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में कैफी आज़मी की लिखी हुई शब्द रचना। गीत को स्वर दिया है सुरैया ने, फिल्म का नाम है शमा।

0: सुरैया की मीठी आवाज़ में शमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था कैफी आज़मी ने, संगीतबद्ध किया था गुलाम मोहम्मद ने। इसी के साथ आज का यादों के झरोके से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचारों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित

0: किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्य

0: का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कलेश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईते ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए।

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112311 7171 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges

छत्तीसगढ़ महिमा का ये गीत आप सुन रहे थे पंचराम मिर्जा और साथियों के स्वर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, स्वर है भागवत सप्रे और साथियों के।

मुठ्ठा बांध के आए संगी हाथ पसारे जावे। ये गीत आप सुन रहे थे, कार्यक्रम अमराई आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं।

0: ये हीरा जैसे काया कचरा हो गए, ये गीत आप सुन रहे थे पंचरा मिर्जा और साथियों के स्वर में। अगला लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे, उसके पहले आइए सुन लेते हैं कुछ संदेश।
1: नई चेतना आई है, बदलाव की बयार लाई है। हिंसा को ना कहें, सम्मान को हाँ कहें। महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, जीरो टॉलरेंस यही है हमारी तैयारी। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना, नया भारत। दिल में अटका हो कोई गाना तो सोचिए मत, भेजिए ईमेल और सुनिए अपना फेवरेट गीत। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में रोज शाम 6:20 से 6:45 तक और 7 से 7:20 तक। ईमेल आईडी है geetmail@gmail.com। आकाशवाणी बिलासपुर से।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बहुजन हिताय बहुजन सिखाए अपनी आकाशवाणी। इस संदेश के बाद कार्यक्रम अमराई में आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं अगला गीत भागवत सप्रे और साथियों के स्वर में।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमराई। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज सुबह 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। ये फोन इन कार्यक्रम आज तैयार किया है महावीर बरगा ने। 10:30 से सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम लेकर आएंगे 11 बजे से। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन, इस विषय पर एक भेंटवार्ता हम प्रसारित करेंगे डॉक्टर एकता ताम्रकार से। वैसाखू भैया की बातचीत कार्यक्रम ग्राम सभा में शाम 7:20 से। साथ ही वानिकी फसल की नर्सरी और रोजगार विषय पर आज बिरा के गोठ में आप सुन सकते हैं जानकारी। मंडी मौसम का हाल भी होगा, गीत संगीत का साथ भी होगा कार्यक्रम ग्राम सभा में शाम 7:20 से। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, सुनते हैं भागवत सप्रिय और साथियों की आवाजों में ये गीत।

माटी के चोला झनकरिया गुमान, ये गीत आप सुन रहे थे भागवत सप्रे और साथियों के स्वर में। इसी के साथ आज का अमराई कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 9 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बोल बच्चन इस फिल्म का गाना हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गाना, संगीत हिमेश रेशमिया का।
1: चला।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: राउडी राठौड़ फिल्म का ये गाना कुमार सानू और श्रेया घोषाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, संगीत साजिद वाजिद का।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना जब तक है जान इस फिल्म का गाना, हर्षदीप कौर की आवाज, गुलजार के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम

0: काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया।

0: था, सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कंपटीशन थी। और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही

0: सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निर्लानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निर्लानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

नाम मेरा जिया। सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में

0: छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ, तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गाँव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, उन बदमाशों को यही है?

0: की दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
0: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
2: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया, पागल हो गया, मेरा दोस्त पागल हो गया।
2: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
2: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
2: हाँ।
1: किसको?
2: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
2: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
3: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्यों मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
1: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर से शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर

0: लगभग 126 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व में आज का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी आज स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों और आम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल जशपुर और मुंगेली जिलों में कई विकास कार्यों की सौगात दी। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम कलीवा में उन्होंने 16 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, आधुनिक हाट बाजार, फल सब्जी मंडी, स्कूल भवन और महतारी सदन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, कृषि, विपणन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री ने 353 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल टी20 क्रिकेट मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। जवाब में 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब रही, लेकिन कुणाल पांड्या की पारी ने टीम की जीत के करीब पहुंचाया और फिर आखिरी बॉल पर रसिक सलाम ने 2 रन लेकर टीम को जीत दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति महावीर बरगाह की है।

कार्यक्रम सुनोइया और फोन करोइया जम्मो श्रोता संगवारी मन के स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में आज के ए अंक में आपके संग हवा मैं महावीर बरगा झोका जय जवाहर राम राम। संगी हो, मौसम ह घड़ी घड़ी बदलत है, अब गर्रा धुका करी से और हमारे श्रोता मन भी अब्बड़ चर्चा करीन है मौसम बदले के, अब फिर उतके गर्मत घलो है, तो चेत रखना है भाई स्वास्थ्य के भी और जगह जगह रुख राई गिरे है, पेड़ गिरे है, खंभा गिरे है, तो यातायात व्यवस्था के भी।

0: है ना, आए जाए में कई ठे घटना दुर्घटना हो जाते थे, तो चेत रखा बढ़िया। और यदि गोट बात करा था ना, फोन की घंटी आए लगी ना, तो गोठिया थन श्रोता मन करा ले थन आज के पहली फोन कॉल। हेलो, स्वागत है कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमार गीत में। कौन संगी बोला था भाई?
1: मैं मुकेश कुमार सोनकर गोठियावत हूँ।
0: मुकेश भैया, गांव के नाम घलो बताओ।
1: अमलेश्वर महादेव घाट रायपुर छत्तीसगढ़।
0: मौसम कैसे है अमलेश्वर क्षेत्र में?
1: अरे कल तो यहाँ मस्त पानी गिरी से, लेकिन आज फिर वही पुराना मौसम जो धूप होते।
0: अभी तो मूल मौसम घाम के, भले ही कल बौरा गिरे से, यू भी गर्रा धुका करी से, रूख राई मन भी कई गिरे।
1: अब कल हमारे यहाँ 4-5 बार लगभग लाइट गोल हो।
0: अच्छा अच्छा हाँ, और अभी ये मौसम में दिक्कत होते है लाइट गोल के। कहो खंभा गिरा थे तो खपत भी बहुत बढ़ गए भैया। घरों घर एसी चला थे, पंखा चला थे, कूलर चला थे।
1: काहे ना कि धरती के जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं गर्मी के कारण।
0: है ना तो गर्मी बचे क्या का उपाय बताओ तो सुझाव।
1: अरे गर्मी से जब बचना है ना, तो सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि काम ना धूप निकले से पहले पूरा कर ले। अगर गर्मी में निकालना ज्यादा जरूरी होते तो मुंह कान
0: बढ़िया बांध ले, सूती कपड़ा में कर दे।
1: और ज्यादा ज्यादा पानी पिए और आम के पना भी पिए, साथ में एक ठो प्याज अपन थैली में पकड़ के निकले।
0: ठीक कहा था। और उसने फिर ककड़ी, कलिंदर, खीरा सब मौसम के फल है। जेमन हमला बढ़िया लाभ कर सकत है, तो बड़ा अच्छा लगा था गोट बात करके। अब एक उठाऊ श्रोता कर गोठिया ले थन।
1: चलो ठीक है,
0: तो फिर गीत के आनंद ले। बहुत धन्यवाद फोन लगाए।
1: धन्यवाद।
0: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन संगी बोला था भाई?
2: मैं छोटी चक्रधारी बोला था, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़।
0: तो छोटू भैया।
2: हाँ सर।
0: आपके आवाज बड़े दबे दबे आते हैं, कैसे सुते हैं का?
2: अंदर सर, अंदर में पावर कम है।
0: ऐसे हमला तो ऐसे लगा था आवाज की ना बढ़िया, आप सोते हैं ठंडा ठंडा में। अच्छा अच्छा, अब बतावा का काम बुता चलते?
2: सर मैं तो घर में बुता चला थे, सिलाई वाला काम है। तो वही लगे रही था। दिन भर आकाश पानी भी
0: सुनता था। बहुत बढ़िया हो तो
2: काम भी हो।
0: अच्छा हो, मनोरंजन काम एक संग होते रहते।
2: पहली बार मोर कॉल लगी सर, बहुत दिन से प्रयास करा कर।
0: अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत आपके, पहली कॉल लगे है आप लोग, बधाई भाई। हम लोग बहुत खुशी होते कि हमार नया श्रोता कर बातचीत हो। श्रोता तो पुराना है, लेकिन कॉल है पहली बार लगे है, कहा था है
2: हम बहुत दिन से बचपने से, मतलब पिता जी है ना।
0: हाँ?
2: रेडियो सुने के बहुत शौकीन।
0: अच्छा बस उसने तो बढ़िया रेडियो सुनत रहा, चिट्ठी पत्री घलो भेजे करा, ईमेल करे करा। अब फोन तो आज लगे और लगा कर लगी फोन है भाई, है ना। एक उठाऊ संगी कर गोठिया था भाई, तो गीत सुनवा। बहुत बहुत धन्यवाद फोन लगाए।
2: नमस्कार।
0: स्वागत करा थन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में। कौन बोला था संगी?
3: चिकमगी क्रासिया कालपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में मोहन सिंह बोला था।
0: बताओ भैया, क्या हाल चाल है?
3: ठीक है दादा, कल तो पानी वानी गिरी, पानी गिरी तो तूफान आई, जगह गिरी से।
0: और आज कैसे है मौसम?
3: यहाँ तो मौसम एकदम करी से ठंडा ठंडा हवा चलते।
0: चला भाई बढ़िया है। अब वैसे तो मूल रूप से अब तो गर्मी मौसम ही चला थे, अब कल भले बिगड़ गई से मौसम के मिजाज है।
3: तो हम जैसे इंसान में तो गलती से पेड़ पौधा के कटाई हुए थे, तो अंदर कभी पानी जल्दी गिरे थे,
0: है ना। देखा मौसम के प्रकोप या कल्लाय बिगड़ा थे, तो कर भाई परिणाम सब भुगतना है। तो जरूरी है कि भाई सब चेत करें और हरियाली भी बगराए, वह हम कुछ प्रयास कर सकत हैं। गर्मी के महीना में क्या प्रयास हो सकत है इंद्रवान भैया, आपके विचार में?
3: गर्मी के मौसम में पौधा लगाए, अब उसके बाद घेराव करें, सुरक्षा करें, और उसके बाद पेड़ पौधे जो काटा थे वो जंगल खत्म होते हैं, पर्यावरण सुधावा मिली, ये सब का बात है।
0: ठीक ठीक ठीक, कहना है बहुत सुंदर बात कहे है आप मन। एक उठाऊ श्रोता मन कर गोठिया था ना, आप लग गीत सुनवा। बहुत बहुत धन्यवाद फोन लगाए। वह हेलो।
4: राम राम, जय जोहार भैया।
0: जय जोहार भैया, कौन संगी बोला था भाई?

0: ध्रुवराम साहू बोल रहा हूँ भैया, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश।
1: ओ, का हाल चाल है ध्रुवा भैया?
0: हाल चाल बढ़िया है भैया। जब उड़ीद की खेती करा था,
1: अच्छा वाह भाई।
0: और मैं पानी उनी पलोत रही तो सोचे एक अंतराल के बाद लगा लान फोन करके, और लग गलोगे भैया बहुत खुशी हो गई।
1: फोन तो लगवे करी भाई, आप मन एकदम तन मन से लगाया फोन, तो कैसे नहीं लगी है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, तन बिल्कुल लगा था फोन।
1: हाँ बहुत अच्छा लगा था ध्रुव भाई। तो कब तैयार हो ही अपन उरीद अभी लगाया है था?
0: ये का 2-2.5 महीना खोते भैया, जन ग्रीष्मकालीन उड़ा देते ना।
1: अच्छा,
0: अभी दे हमारे थोड़ा तो लेट वो है ना, इसे 15 मार्च के लगभग लगभग मई के अंतिम तक हो जी
1: हो
0: भैया।
1: जाही का देव। हाँ, बढ़िया। तो गर्मी के जो फसल है ते अधिक लाभ रहते, ऐसे कहते हैं कि कीड़ा मकोड़ा कम लगते।
0: हाँ, कीड़ा मकोड़ा कम लगते भैया, और खर पतवार कम होते हैं में,
1: अच्छा।
0: और काहे सकेले इकट्ठा करे में भी आसानी होते,
1: हाँ,
0: और बारिश में भी करसन खेती करे बड़े कर।
1: हाँ, तो
0: तो खाए मिलते भैया बढ़िया, सगा पुना आते सब्जी वजी दाल वाल भी खाए मिलते हैं में।
1: हाँ।
0: आपका

0: बहुत अच्छा लगा था ध्रुव भाई। तो कब तैयार हो ही अपन उरीद अभी लगाए है था?
1: ये का 2-2.5 महीना सोचे भैया जन ग्रीष्मकालीन उड़ा देते ना।
0: अच्छा अच्छा
1: अभी हम तो लेट वो है ना इसे 15 मार्च के लगभग लगभग मई के अंतिम तक
0: हो जाए का देव। हाँ हाँ बढ़िया। तो गर्मी के जो फसल है ते अधिक लाभ रहते ऐसे कहते हैं कि कीड़ा मकोड़ा कम लगते।
1: हाँ कीड़ा मकोड़ा कम लगते भैया और खरपतवार कम होते हैं।
0: अच्छा
1: और का है सकेले इकट्ठा करे में भी आसानी होते।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और बारिश में भी करसन खेती करे बड़े कर।
0: हाँ तो जो
1: तो खाल मिलते भैया बढ़िया सगा पुण आते था सब्जी दाल वाल भी खाल मिलते हैं।
0: हाँ।
1: सगा पुण आगे बड़ा खावे तो खाता तो हो जाते भैया।
0: अच्छा
1: और अच्छा भी लगते।
0: हाँ हाँ बड़ा
1: और गाय घर की खेती करवे तो अपन ज्यादा भी बड़ा भी चलते भैया।
0: हाँ वही पूरे थे।
1: हाँ वही थे
0: है ना है ना। तो ध्रुवा भाई बालाघाट क्षेत्र से आपन फोन करे बहुत अच्छा लगा था। तो आकाशवाणी कार्यक्रम बढ़िया सफा सुना थे।
1: हाँ सुना थे भैया आजकल हम तो मोबाइल ऐप में सुनथन।
0: अच्छा
1: न्यूज आने आप जिन ऐप है हमारी भी सुनता था भैया बहुत अच्छा
0: बहुत बढ़िया। तो भाई आकाशवाणी है एक परिवार है अपन सब परिवार सुना था समझा बस बस बस बहुत अच्छा लगी से आपके गुरतुर बातचीत है। अब एक गीत के आनंद लिया जाए ध्रुवा भाई।
1: हाँ ठीक है भाई
0: है ना। फोन लगाए बहुत धन्यवाद और सुना परिवार के संग गीत।
1: हाँ
0: लेवा लेवा भाई।
1: हाँ डोंगरिया मलाखंड से मुन्ना लाल पटले जी है।
0: हाँ
1: और टिकरीपारा गंडई से जागेश्वर देवांगन जी है। पवन कुमार सिंह जी है। सुरित रमेश साहू जी है।
0: हाँ
1: वास्तव कुमार साहू जी लो भाई।
0: हाँ तो जम्मू संगी मल्ला भी का देवा भाई सुने आकाशवाणी बिलासपुर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते भैया पारी बांध बांध के मन फोन लगाता।
0: अच्छा ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है भाई राम राम। जय जोहार
0: जय जोहार।

0: हेलो,
1: नमस्कार नागराज।
0: नमस्कार।
1: या नागानी हूँ क्या तो बड़े कैंपे।
0: हो बहुत बहुत स्वागत है चगरफाटा के, हमर मितान के, संगी के, रेडियो श्रोता के। का हाल चाल है बताओ भैया।
1: बढ़िया चले। बस मौसम बदल जाते है, समझ
0: हाँ
1: नहीं आता कि क्या है भगवान के नजदीक।
0: हाँ, अब बहुत शिकायत होत रही से कि नहीं, बड़ गर्मत है, गर्मत है, तो भगवान भी कहे कि चला भाई थोड़े छींचा जाए पानी ऐसे
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। था मौसम
0: है।
1: खुश हुआ था डिफेंस।
0: हाँ, आज कैसे है मौसम नारवानी भाई?
1: नहीं आज तो यहाँ पर धूप निकले है, थोड़ा
0: हाँ,
1: तेज भी धूप है।
0: अब मुख्य रूप से तो वही कहा था हमारे उस श्रोतावन कर बात हुई से, तो गर्मी महीना ये मूल रूप से चला थे, ये अलग बात है कि थोड़े
1: हाँ
0: से छीटा बौछार पड़ गए,
1: हाँ
0: बट
1: सही कहना है। मई महीना तो फुल गर्मी की वजह से,
0: हाँ है ना। हाँ।
1: यानी कि बड़ी बात नहीं है। जून को भी पूरा महीना पड़े है।
0: पड़े है अभी है ना। हाँ, तेकर बादे तो हम मानसून पहुंचते भाई।
1: बस आज मदर्स डे है,
0: हाँ
1: माँ के सम्मान किए जाते हैं।
0: हाँ
1: मौला समझना तो माँ के सम्मान तो रोज होना चाहिए।
0: हाँ
1: एक दिन मनाने लगे कोई मतलब अच्छा नहीं है।
0: हाँ एक दिन के तिहार नो है, लेकिन कहूँ मनात है तो वो बुराई नो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन
0: हाँ,
1: माँ का
0: माँ
1: मान तो
0: के,
1: रोज
0: हाँ
1: करना
0: लेकिन
1: चाहिए।
0: हाँ, मातृशक्ति
1: माँ
0: के
1: खुश है
0: समान।
1: तो
0: हाँ
1: हमारे खुश है वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 12 महीना के चीजें, माँ के ममता तो भाई कभी निसिराए, और एक ध्यान सर्वचेत रखना है कि माँ के मुस्कुराहट बने रहे। तो नरवानी भैया एक उठाऊ संगी मन के, दे फोन उन बाजा थे हम मन कर गोठिया ले थन, तह गीत सुनबो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना,
1: धन्यवाद।
0: तो फोन लगाए बा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हेलो हेलो, है दे कौन संगी फोन लगा रही है और कट गए भाई।
1: हेलो,
0: स्वागत है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में, कौन बोला था भाई?
1: जय सिया राम। राम राम गा मयारू भैया।
0: राम राम भाई।
1: पवन कुमार सेन बोला था भैया, हमार गंडई पंडरिया ले। अब
0: ओ गंडई पंडरिया के हमर श्रोता के हम स्वागत करत हन,
1: आप
0: बताओ।
1: मन बहुत बहुत धन्यवाद देवासन भैया।
0: बड़ा अच्छा लगा थे गोट बात करके, का हाल चाल है बता पवन भाई।
1: बहुत सुघर हवान ए दे गर्मी में। हवन दा हमार दा तो आधा कभू बदली कभू घाम तो कभू हल्का फुल्का पानी,
0: हाँ
1: ऐसा मौसम बने भैया हो।
0: हाँ उसने
1: अब ओकरे
0: लगभग
1: संगे संग आप मन के बिलासपुर आकाशवाणी के आनंद लेवत रिथन, हमार चोला गदगद हो जाते भैया का कार्यक्रम का सुन के।
0: वाह पवन भाई, आपके गोड बात से तो बड़ा जी जुड़ा आ जाते, बड़ा अच्छा लगा थे।
1: अब
0: और
1: काय भैया, मैं ना जब कभी गोठियाता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ,
0: हाँ
1: ये सब आकाशवाणी के मुख्य देन है भैया। इसके माध्यम से दे अलवा जलवा सीखा हूँ भैया।
0: पवन भाई, अब
1: हाँ
0: हम जो कार्यक्रम बनाथन ना, वो आप जो लिख के भेजता ओकरे अनुसार बनाए के प्रयास करथन।
1: अब कहा है दोनों जन के मेन भी आप जब होते ना
0: बस
1: तो
0: बस
1: अब वो कार्यक्रम के आनंद लग फिर धन पूछ
0: हाँ
1: भैया
0: हाँ बढ़िया बतर
1: है।
0: बनते
1: अब
0: वही है। हाँ
1: किसे नहीं है सोनम सुहागा मिल जाते किसे ना
0: हाँ
1: इतने ढंग के बिलासपुर के कार्यक्रम में तब सोनम सुहागा मिले जैसे लगा तो
0: बस
1: भैया।
0: बस बस, बहुत अच्छा लागी से, चला बढ़िया, बहुत अच्छा लागी से गोट बात करके पवन भाई। और श्रोता मन लाइन में है, उमन कर गोठिया ले।

0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, गुड़ाओ गुठियाओ, हमारे जात का श्रोता है, बोला जोड़ के रखे रहो भैया अपन प्रेम में,
1: तहां गीत के आनंद ले वो। धन्यवाद फोन लगाए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो
1: कौन संगी बोला था भाई?
2: हाँ राम राम भैया, बरगाज जी बोला था, बोला थे।
1: हाँ, कौन बोला था भाई?
2: हाँ मैं लोटना पारा बोला था भैया।
1: हाँ
2: जानदार का आवाज लो भैया।
1: हाँ लेकिन नाम लो बताओ तो जम्मू श्रोता मन सुना था ना भाई।
2: हाँ मैं मेघनाथ पटेल बोला था भैया। हाँ, लोटना पारा,
1: लोटना पारा। हाँ, हाँ, तो मेघनाथ भाई की हम स्वागत करा था कार्यक्रम में।
2: हाँ भैया दूर से पहली बार बात होते भैया, नमस्कार
1: है। नमस्कार है, जय जोहार है, बहुत खुशी लगा थे कि हमारे श्रोता कर पहली बार गोड बात होते हमारे भाई।
2: हाँ भैया ये अभी ना पान पे चला थे भैया, तो पान तोरवात हो रेल डबरी में।
1: अच्छा वाह,
2: आज है तीसरा रोज हो गए तोरत।
1: हाँ
2: तो ओकरे दूध शब्द गाना बनाया हम,
1: बता दे। हाँ सुना दे।
2: चल तोरेला जाबो हम जो ही तेंदु पान तोरेला जाबो ना, उल्हा उल्हा हमन पाने नहीं तोरन, अब कट्टे पटेला घलो नहीं तोरन, चल तोरेला जाबो हम जो ही तेंदु पान तोरेला जाबो ना। आऊ ही अंतरा भैया, लेकिन अब ते कहा था मतलब
1: बहुत बढ़िया। आऊ में एक लाइन बड़ा अच्छा कहे है मेघनाथ भाई, उल्हा उल्हा पान ला नहीं तोड़ना है हाँ ना, तो आऊ पान बाढ़ी हूँ मैं। तो
2: पटेल भी नहीं तोड़ना है, आऊ 50 से गड्डी भी बनाना है।
1: अच्छा तो रात हो एक कतेक दिन तक चलते पान तो रही है?
2: अबे हाँ 22 दिन 23 दिन 24 25 दिन चल भैया, पहले तक महीना चला।
1: हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद फोन लगाए बर, अब एक उठाओ श्रोता कर गोठिया ले थन।
2: हाँ भैया
1: है ना, तहां ले राम राम भैया, तहां गीत सुनबो।
3: हेलो
1: कौन संगी बोला था भाई?
3: मैं जगमोहन रात्रे बोला था टेमरी ले।
1: हो का हाल चाल है जगमोहन भैया?
3: घर के काम चला भैया।
1: ऐसे का बनवा था जी?
3: नवा बनाए टेन है नवा।
1: कतेक दिन में पूरा हो जाए? अब
3: हो गए पूरा, छवाई उबाई नहीं हुए भैया।
1: अच्छा अच्छा, तो रहे वही शुरू कर दे का?
3: हाँ
1: भी छवाई बन जाते।
3: हाँ उसने करबो ना भैया।
1: हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक तो है।
3: हाँ
1: अब पानी वानी के सब सुविधा है बढ़िया?
3: हाँ पानी सुविधा हवा।
1: हाँ ठीक, बाकी देखा जगमोहन भाई आप मन के सेंद्रीय तो बढ़िया नदिया तीर के गांव में।
3: हाँ हाँ नदिया तीर में हवा टेमरी है।
1: लेकिन जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है या जहाँ पानी की सुविधा है सब ला चेत करके पानी के खर्च ला करना है।
3: हाँ, तो सब ध्यान रखन भैया।
1: हाँ ना, रखना भी चाहिए सबकी जिम्मेदारी।
3: बेस्ट जान नहीं जाकन पानी ला।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब का है जिस जे समय असुविधा होते तभी चेत करथन तब फिर भुला जातन, तो हमला हिला ना।
3: सही बात है भैया।
1: हाँ हमेशा चेत रखना है। चला बहुत अच्छा लगे से गोड बात करके, अब एक गीत सुने जाए।
3: हमारा नातिक नाम ले भैया
1: ले ना जी,
3: घनेन्द्र रात्रे, मोर बेटा नाम गुलशन रात्रे।
1: हाँ
3: मोर भाई नाम है आशा भाई रात्रे।
1: चला तो सब जन सुना रेडियो में, और गीत भेजा था आनंद लेवा गीत के।
3: धन्यवाद भैया,
1: धन्यवाद फोन लगाए बा।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कौन संगी बोला था भाई?
1: महावीर भैया, राम राम गा।
0: जय जोहार। चार
1: धनगांव गोसाई जिला मुंगेलिस मुकेश गोसाई बोला था भैया।
0: हाओ, मुकेश भैया के बहुत बहुत स्वागत करत हन। बतावा का हाल चाल है मुकेश भाई?
1: भैया भी घरे मरे था नाका साड़ी विला सुर सुना था गा।
0: हाओ, तो बढ़िया सफा सुना थे ना?
1: हाँ भैया बढ़िया सुना थे।
0: हाओ हाओ, आओ बतावा कैसे कैसे हाल चाल है, मौसम कैसे है मुकेश भाई?
1: मौसम तो रोज भैया काम हो ताले हवा तूफान पानी गिरत
0: हाँ,
1: है।
0: है ना, है ना। शाम के ना उसने हो जाते थी भी गर्रा धुका, तहाँ दिन भर तहाँ गर्मत रहते है
1: भैया
0: ना। फोन लगाए वो, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो,
1: हाँ सर नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोला था भाई?
1: मैं बलराम सिंह बोला था भैया,
0: कहाँ ले बोला था बलराम भाई?
1: दंतेवाड़ा बसेली बस्तर संभाग से।
0: अच्छा, वाह, आकाशवाणी बिलासपुर मोहन सुन था कि ही
1: हाँ
0: रथा।
1: मोबाइल में सुनता ना भैया यहीं
0: अच्छा
1: से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा का काम
1: और
0: बोता चलते?
1: यहाँ मैं सैलून दुकान चलाता हूँ बाल कटिंग,
0: वाह, तो
1: वहाँ
0: काम
1: मुझे
0: चलत
1: बाल कटिंग
0: रहते और
1: सीखना
0: रेडियो
1: है।
0: चलत रहते, दोनों एक संग हो जाते।
1: हाँ
0: हाओ,
1: मोबाइल से चालू कर दिया ब्लूटूथ चलाते हैं।
0: है ना, है ना। हाँ, कई ठे सैलून में हम देखे हैं, चलत रहते बढ़िया, गाना रेडियो बजत रहते, अति काम बोता भी चलत रहते। तो बलराम भाई, सैलून के काम ला आप कहीं जाके सीखे है कि वहीं सीखे?
1: नहीं मैं कुछ पहले सीखा हूँ भैया, हमारे यहाँ बाबू जी पहले
0: अच्छा,
1: काम
0: हाँ
1: करते थे
0: हाँ
1: ना, तो
0: ठीक,
1: परसों मैं ज्यादा सीख गया हूँ।
0: हाँ। आजकल बहुत नया नया स्टाइल रहते, एक ओंग बाल छूट गए हसन दिखते, कोई जगह बाढ़े हसन दिखते, तेरा नया स्टाइल बन जाते
1: हाँ आपका रंग रंग के कटिंग आपका फायदा
0: हाँ
1: है।
0: हाँ तो उसने मतलब बनाया वो कैसे करता, वो सीखे लाग थे कि बन जाते?
1: हाँ ओकर बाद हम सीखने लगते हैं। हाँ
0: अच्छा, हाँ। तो एक उठाऊ संगी कर गो ठिया थन, तो फिर गीत सुनबो, है ना। फोन लगाए वो, धन्यवाद। हेलो,
1: हेलो
0: कौन बोला था बहनी?
1: हेलो
0: हाँ, कौन बोला था, नाम
1: हाँ राम
0: बतावा।
1: राम भैया, मैं मीरा पटेल बोला था पछाल ले।
0: हाँ, मीरा बहनी के हम स्वागत करत हन कार्यक्रम। अब फोन लगा के कैसे निगोठी आत रह?
1: ओ ना लड़का मन थोड़ा व्यस्त रही तो खेलन थोड़ा बिजी हो गए रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ, ऐसे भी
1: पहले
0: बहुत।
1: हमारे घर में मस्त बेल पेड़ है, वही माँ के बड़े वाला फरे रही से तोड़े हैं वही का खाद रहे हैं।
0: ओहो, वाह, गर्मी महीना के वह मतलब समझा कि अमृत
1: हाँ
0: काल है
1: गर्मी के दिन है, मत
0: ना।
1: अभी धान मिस से आए हैं।
0: हाँ,
1: हाँ
0: अच्छा, तो बेल के शरबत घलो बना थो हा।
1: हाँ
0: हाँ, मीरा बहनी बतावा कि बेल निकालता ना तो अब्बड़ लट लट लट लट निकलते, तो कैसे जल्दी कैसे निकले पाते?
1: ओ जमीन में पटक के निकाले हम सीधा।
0: अच्छा हाँ, आकाशवाणी बिलासपुर कार्यक्रम सुनता,
1: हाँ
0: अभी गर्मी के धान की मिसा था?
1: अभी गर्मी के धान मिसाई चली।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मशीन में मिसाई होते?
1: हाथ में लुए हैं नौखाले मशीन में मिसाई करे हम।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: मोर पति ने लंगी बात कर ले भाई
0: हाँ, करवा देवा भाई।
1: देखो
0: देखा कहाँ गिन पटेल जी,
1: ओ तू जा रहे हो नीचे हो इसे की
0: नहीं करो कहते या
1: हाँ
0: तो लेवा भाई, गीत हम भेजत हन, आप दोनों पति पत्नी दंपति लइका मन गीत के आनंद लेवा।
1: हाँ
0: हाँ, धन्यवाद फोन लगाए बा।
1: राम राम भैया।
0: राम राम बहनी।

अब यही गीत के संगे संग कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत के आज के अंक यही सिरात हवे। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली हमन ल श्री सौरभ के सुरवानी जी मन के संगे हो। कार्यक्रम में आप मन शामिल हो सकत है, गोठ बात कर सकत है, अब गीत सुन सकत है। आप मन के फोन कॉल ल हमन रिकॉर्ड करथन हर इतवार के दिन बिहनिया 10:30 ले 11 तक। और फोन नंबर हवे 2665592। फोन लगाए के पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड 07752 जरूर लगा। और आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्री लिखिया, ईमेल करके भेजिया हमला अगोरा रही। और देवा विदा अपन संगी महावीर वर्गाला। जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत, प्रस्तुति महावीर बरगाह की थी। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद।

प्रेम रतन धन पायो कार्यक्रम आपकी पसंद का ये पहला गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं पलक मुच्छल और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल का लिखा हुआ ये गाना है। सुनना चाहते हैं हमारे बेमित्रा से श्रोता साथी सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत और उनका पूरा परिवार। शांतिनगर भाटापारा से चिट्ठी आई है। मिलव दास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत कुलदीप, विरजा, संजना और लक्की की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से इस गीत को सुनना चाहते हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय। भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार। और खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गाना।

हौले हौले ये प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी।

इसे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में इस गीत को आप सुनेंगे। जयदीप साहनी का लिखा हुआ गाना है। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेख राम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू के मारवाड़ी कुआं से सिया राम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ नीलम। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता पौड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू और उनके परिवार वाले। रिंगनी छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। तेलीपारा बिलासपुर से रंजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता श्रीवास और धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से आपके साथ हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अंबालिका, अनामिका, बलदाऊ साहू, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव।

0: सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अगला गीत सुनिएगा फिल्म जानी दुश्मन से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। वर्मा मलिक की लिखी हुई शब्द रचना, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश हमारी इन श्रोताओं की है, हथिनी पारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण दुलारी वर्मा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, यमतपाल विदर्भ से आपके साथ हैं, संतोष खड़से और विनोद डोंगरगांव से, राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका के साथ, बाग बैरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन। बसीबार से चिट्ठी आई है, शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद कुमारी, आंचल कुमारी, चंचल कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, डॉक्टर मनोज कुमार के साथ, शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और पूरा कोरम परिवार। आइए सुनते हैं ये गीत आप सबकी पसंद पर।

0: जानी दुश्मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आपकी पसंद पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए श्रोताओं सुन लेते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट्स।
1: नमस्कार, उमाशंकर पांडे का। लीजिए, प्रतिदिन की तरह प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के साथ ही शहर से बाहर उत्तर में रतनपुर मार्ग तो दक्षिण में रायपुर मार्ग, पूर्व में मस्तूरी तो पश्चिम में तखतपुर मार्ग में इस प्रकार बिलासपुर की चारों दिशाओं की सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, यद्यपि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी हम यदि छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो सड़क दुर्घटना में बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रायः बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। सबसे पहले तो अपने वाहन की गति में संयम रखें, क्योंकि प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण

0: वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। इसी प्रकार आप किसी वाहन से कहीं जा रहे हैं, इसी बीच दाहिने या बाएं आपको मुड़ना है तो मुड़ने से पहले हाथ से या इंडिकेटर लाइट से संकेत जरूर देवें। दिन के समय धूप में इंडिकेटर लाइट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए दिन में हाथ से ही मुड़ने का संकेत देवें, तभी अपना वाहन मोड़े। दोस्तों, जब आप कार जैसे वाहन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, कहीं रुकना पड़े तो हमेशा अपने बाएं तरफ का ही दरवाजा खोलकर उतरना चढ़ना करें, दाहिने तरफ का नहीं। कार जैसे वाहन में सफर करते समय विशेषकर युवा वर्ग बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाकर मस्ती करते हुए चलते हैं। इससे पीछे से आ रहे वाहन का आभास इसके चालक को नहीं हो पाता और ओवरटेक करते समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः ऐसी मस्ती न करें, ये घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ चालक वाहन चलाते हुए वीडियो देखते हुए चलते हैं, इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जब सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की कतार लगी है, वो अभी खूनी रफ्तार में। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन सावधानियों को हमेशा अपनाकर चलें, ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए थे यातायात पुलिस बिलासपुर से। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। आज 11 मई सोमवार को शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच महिला सभा कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ताक्रम के लिए फोन पर आधारित फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी, जिसके लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ज्योति आचार्य, और आपसे चर्चा का विषय होगा आंखों की देखभाल कैसे करें। बहनें हमें फोन कर सकती हैं इन नंबरों पे 0775226592310002। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा और इंतजार आपको होगा कार्यक्रम के अगले गीत का। तो अब सुन लेते हैं खिलाड़ी फिल्म का वो गाना जिसे अभिजीत और अलका याग्निक ने गाया है, अनवर सागर का लिखा हुआ गाना, जतिन ललित का संगीत निर्देशन, और सुनने के लिए चिट्ठी लिखकर भेजी है ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती और सुरभि कैवर्त ने। नकुल शाह, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, आप सब लूतरा खमरिया से इस गीत को सुनना चाहते हैं। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से, रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। हठौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल के साथ। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन कुमार, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता और वेद किरण वर्मा।

अलका याग्निक और अभिजीत के गाए इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 11 बजे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनने का।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना

0: चाहिए। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए,
1: जी
0: हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए।
1: जी
0: तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has 2 wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Train, train, train!
2: do it again, please.
3: Train, train, train!
2: I have a red bicycle.

0: देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं ना तो सही, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो ना तो सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर

0: माँ।
1: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
0: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
1: हाँ।
0: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
1: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
0: जी।
1: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
0: जानता हूं मां।
1: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
0: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
1: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।

0: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
1: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
2: यस सर।
1: नाथ उसे निशाना साधो।
0: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
1: फायर।
0: सर
1: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
2: जी।
1: फायर।
0: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
1: हाँ लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
0: ठीक है सर।
3: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, क्यों क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो?

उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि

0: जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी हम कर रहे थे। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, जिसे आपने ट्यून किया है FM 103.2 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, शान की आवाज, शान की रचना और संगीत राम संपत का।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है, प्रादेशिक समाचार आइए सुनते हैं रायपुर केंद्र से।
1: लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे।
2: And yes, Neelam, the time for the Surya Kirans, the aerobatic team, the Surya Kiran aerobatic team, SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early, we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
3: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
4: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं इसमें, बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा, और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों।

0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अभी आपने सुना। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: रंग तरंग
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने

0: के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था।
1: हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए मंदिर में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
0: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the road show. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a part.

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए विश्वरूपम इस फिल्म का गीत, आवाजें कौशिकी चक्रवर्ती और कमल हसन की।
1: धागे

0: What is your private number? कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है?
1: What is your style?

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, ड्रीम गर्ल। इस फिल्म से जॉनी टागांधी और मीत ब्रोस की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोस ने।

0: और अब आपको सुनवाते हैं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने। हिमेश रेशमिया, कीर्ति सगाठिया और पलक मुछाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम जय हो।
1: चक लचक मचक चाल चलत जा। ए छोरा गांडा थई गया।

0: ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

करण सहंबी की आवाज में सुनिए लुका छुपी फिल्म का ये गीत। निर्माण ने इसकी रचना की है और धुन बनाई है तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

विशाल ददलानी और नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजों में सुनिए बोल है मयूरपुरी के प्रीतम की धुन। फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर आज आप तय कर रहे हैं नेहा आगरकर देसाई के साथ। स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, इबारत तो आपने पढ़ ही ली होगी। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता है जो फेसबुक पर नहीं है और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार जरा इबारत को ध्यान से पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको और एक बार मैं पढ़ देती हूं ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर

सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ, यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन जो जो जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाजा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर

सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाजा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफर की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को, बेला महकारे महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत। तो सही पहचाना है आपने, बिल्कुल यही है वो गीत।

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहां तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा

लगाऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराएं, हमको लुभाएं। मन कहें क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है।

बचपन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को। करण अर्जुन फिल्म से कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे। तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा

जाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है, तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकलें तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन।

तो कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम विशेषण कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है, तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तोसे नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने, इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी, या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। एक आपके नाम से गाना है, वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है

कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि ये नाम दुर्लभ तो नहीं है, पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है, या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना। जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा। फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें। 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स

0: टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान

0: किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोक

0: अपना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

केएल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सविता बैनर्जी और सीता।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइना टाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से, इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू।

0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
0: जाने के

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा
1: नमस्कार। और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं, क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए, लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही,
1: बिल्कुल
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: रहती है,
2: तभी निकलती है। तो
1: बिल्कुल
2: हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह

0: छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
1: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते हैं वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए हैं उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
0: दी है,
1: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
0: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
1: नहीं नहीं
0: है ना, तो ये गलत बात है ना,
1: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी
1: बिल्कुल, और कदम भी तो
0: हैं
1: थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल।
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो
0: नाची लो, तब तो खैर मन
1: जी
0: का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही
1: जी
0: जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।

0: ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है, जिससे
1: अच्छा
0: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है।
1: अच्छा
0: सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
1: जो मेजर होता है।
0: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपने सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
0: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
1: बीटा,
0: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा?
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चों में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है, कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया, तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: अब देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्त संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण, या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा, हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है?
0: इसमें अभी देखिए, ये जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और

0: मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया, और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
0: आपने बताया है कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है?
1: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाने कितना जरूरी होता है, तो
0: कब कब?
1: शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकार मान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
0: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है, और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
1: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के

0: आइडियल तरीके से, यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं, इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा रही रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रहती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और अगर 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है, थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना जरूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा?
0: एक दो दवाइयां इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जैसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली ये कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाज ही रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी, वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।
2: भारत

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीजें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नजर में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो, या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं ए बी या ओ, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है,
0: ओहो,
1: और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक आध ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
0: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
1: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
0: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है, तो जो लेके जाने वाला है, उसे आपके भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है, तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में ही लगता है, बाद बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है। तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शन का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे। तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी है, उसमें और एक नई बीमारी लगी, जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है। ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है, जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ

0: इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में, और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी एनजीओ से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए एक जानना जरूरी है कि ये जो एनजीओज है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है और इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है अगेंस्ट थैलेसीमिया करके, एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बम्बई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाए हैं, जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोह कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयाँ, जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध हैं?
0: दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयां चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना, जेनेरिक्स बनाते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां हैं इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप देखा है जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हरेक की लड़ाई है, हरेक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से, मैं सुनना चाहूंगा।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम?
1: देखिए, कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है।
0: जी,
1: मेन ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना। अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रैटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के भी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है।
0: जी जी,
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारी लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहां पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
0: जी।
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
1: देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेडक्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल

0: टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई। तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं, तो
1: उसकी
0: वो
1: इंडिविजुअलिटी को,
0: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाए जा रहा था, एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है, उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो संसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की

0: जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
1: वो
0: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, अगर समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की यह है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यह हमें जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए, हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वैसली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।

के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर दलदली मदनगर धर्मपुर गौरा भरदा सिंघरा कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर लुर्गी टकिया मेंढारी प्रेमनगर कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर सस्कालो पंडोपारा सुखरी भंडार कोरवापारा बरपारा कठबुड़ा कंडराजा बैरडाण पतरापारा दांतीढाब घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो सारंगडांड फड़ामाचा हरदीझरिया राजा आमा महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये आम गांव पोटिया क्रोंधा प्रेमनगर बेहरामार औरानारा कूड़ेकेला सिंघी छाप डोंगा भवना हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी मुकुआ जुनवानी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खमहार पाली पथरी पाली दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरी ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़ अमलोर ताराझड़ डडईपानी नगरार खोलापारा जिडार छिंदौला तौरेंगा कावारामा डूमरघाट कोदोमाली कोनारी लूठापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा तुम्बहरा डूंगरडूला गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल

0: अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

चोर मचाए शोर, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। शब्द थे इंद्रजीत सिंह तुलसी के, संगीत था रविंद्र जैन का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरूह सुल्तानपुर।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है। स्वर है शैलेंद्र का, शब्द है मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है आर डी बर्मन का।

इसके बाद आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: आइए अब सुनते हैं अगला गीत, कंचन मनोहर आनंद की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुर्बानी। इंदिवर की रचना है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
8: इन संदेशों से पहले आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवा जगत।

हेलो। हाँ मम्मी। प्रीति बेटा, वो टेंथ वाले और भवन वाले से बात हो गई है? हाँ मम्मी, सब बात हो गई है। अभी आप रखो, मैं आकाशवाणी स्टूडियो में पहुंच गई हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ बेटा। पर वो ठीक है मम्मी, चलो अब सुन रहे हैं।

0: मैं लाइव हूँ और मैं सब संभाल लूंगी। ओके बाय। ओह दोस्तों, आप सभी आ गए हैं। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अरे आप सभी तो हमेशा बढ़िया ही रहते हैं। फिलहाल मैं टेंशन में हूँ। सुना ना आप सभी ने अभी सब कुछ? उफ, मेरी मम्मी ना मेरे पीछे ही पड़ गई है। क्या बताऊं दोस्तों आपको, मेरे घर में शादी है और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं तैयारी को। कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी हैं, सबके लिए कपड़े लेने हैं, मैरिज हॉल बुक करना है, सारे अरेंजमेंट देखने हैं, केटरिंग देखनी है, और ये सब भाग दौड़ के बाद खुद शादी में भी तो अच्छा दिखना है। खैर लिस्ट तो बहुत लंबी है और समय कम, और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है शादी में होने वाले बेहिसाब खर्चे। क्या बताऊँ दोस्तों, पूरे घर का बजट हिल गया है और सबसे ज़्यादा टेंशन तो पापा को है, पैसे जो इनके जेब से जा रहे हैं। दोस्तों शादियों के सीजन में हम सभी ना जाने अनजाने में ऐसे ही ढेर सारे बेफिजूल खर्चों में फंस जाते हैं, जिन्हें हमें जरूरत ना होने पर भी इग्नोर नहीं कर पाते, और फिर बाद में पैसों की तंगी से जूझना पड़ता है। दोस्तों काश ना पैसे पेड़ पर उगते तो कितना अच्छा होता ना, फिर तो पैसों की झंझट ही खत्म हो जाती है ना। खैर ये सब तो सच होने से रहा, मुझे ना अब लिमिटेड बजट में ही सारी तैयारी करनी होगी ताकि मम्मी पापा मेरे छोटे भाई बहन सब खुशी खुशी शादी एंजॉय कर सके, और शादी के बाद भी उनका बैंक बैलेंस ज्यादा कम ना हो, फिर बाद में उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पैसों की बचत ही तो कमाई का दूसरा जरिया है। पैसों से हम होते हैं आत्मनिर्भर और इससे हमें मिलती है ढेर सारी खुशी। और अब आपकी खुशी को 4 चांद लगाने के लिए आपकी दोस्त सोनम लाई है एक प्यारा सा गीत फिल्म हम आपके है कौन से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बचत और सेविंग्स की, और इसी विषय पर ऐसी ही कुछ अपील देशवासियों से की है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कल तेलंगाना विकास कार्यों के शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 2 महीने से हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका भारत पर गंभीर असर हुआ है। हमारे पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है, इसलिए देश को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। इसलिए पेट्रोल डीजल का उपयोग किफायती से करें, जहां मेट्रो ट्रेन हो वहां उन्हीं से सफर करें। कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आज फिर से जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि देश हित के लिए हमें साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऐसा करने से विदेशी मुद्रा बचेगी और ऐसा करने से देश पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा। सच में दोस्तों, ऊर्जा का संकट पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, ऐसे में इन्हें बचाने की पहल और भी तेज हो जाती है। साथियों, इसलिए आज के क्रम वैज्ञानिकी में भी ऊर्जा के अन्य विकल्पों की तलाश करते हुए हम बात करेंगे और ऊर्जा के बारे में जानेंगे। आज के क्रम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में, और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है श्रेया गौरव, जो कि एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट है। श्रेया गौरव, गर्मी का मौसम चल रहा है और इन दिनों हर घर हर वक्त फैन, एसी, कूलर चलते रहते हैं, जो हमें गर्मी से बचाते तो है लेकिन साथ साथ हमारे बिजली का बिल भी बढ़ाते हैं। इसमें ज्यादा बिजली जैसी समस्याओं से बचने के लिए लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, आपका क्या ख्याल बारे में श्रेया?
1: टाइम पर सोलर एनर्जी का यूज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि तो वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो वो नेचुरली अवेलेबल है, तो हमको किसी फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा पर डिपेंड नहीं होना प्राइस के लिए। तो मेरे हिसाब से हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, हम अपने रिसोर्सेज बचा रहे हैं यूज से।
2: हाँ, इसलिए मुझे भी लगता है कि एक जो अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जो कि हमारा सूर्य है, तो उसका यूज की तरीके से अगर हम कर अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, तो वो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए।
0: तो अगर हम बात करें कि सोलर एनर्जी काम कैसे करता है, वैसे तो आज के समय में लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है और उनके पास इससे रिलेटेड बहुत से सवाल होते हैं, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सोलर एनर्जी में हम लोग जनरेट करते हैं सोलर पैनल को, सोलर पैनल की छोटे छोटे यूनिट हैं, उसको हम सोलर सेल्स या फिर फोटोवोल्टाइक सेल्स बोलते हैं, जिसको हम अपने रूफटॉप पर यूजली प्लांट करते हैं। जब उस पर सनलाइट पैनल पर पड़ती है तो जो उसमें जो फोटॉन्स जनरेट होते हैं वो कोलाइड करते हैं, और इसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, तो हम इसको

0: पहले इन्वर्टर के इसको अल्टरनेटिंग करंट पर कन्वर्ट करते हैं कि जैसे हमारे घर में जो करंट सप्लाई होते हैं, हमारे जितने भी टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा जो भी वर्क करते हैं वो सारे एक्चुअल में डीसी करंट में वर्क करते हैं। तो जो सोलर पैनल पे जो एसी करंट प्रोड्यूस होता है हम उसको कन्वर्ट करके डीसी में के बाद अपने घर पे सप्लाई करते हैं, मतलब उसके थ्रू यूज करते हैं।
1: जैसा श्रेया ने बताया उसी तरीके के हम फोटोवोल्टिक जो होते हैं उससे हम सूर्य की मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस बोल सकते हैं जो सूर्य की ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं।
2: कहीं ना कहीं हम ह्यूमन जो रिसोर्सेज होते हैं उसके इस्तेमाल करने के साथ हम नेचुरल रिसोर्स का भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं ना।
0: हाँ, क्योंकि जैसे बाकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो अपने पास जो एक रिसोर्स है उसमें हमको अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है ना, तो हमारे पास वो एक रिन्यूएबल सोर्स हो जाता है, तो ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए।
2: बिल्कुल बेनिफिशियल है और इस फायदे भी बहुत से हैं ना गौरव।
1: हाँ बिल्कुल मैम, ये अगर मैं फायदे गिनाने जाऊँ तो बहुत जस्ट फायदा है इसका। यदि आप कंपेरिजन करेंगी कन्वेंशनल एनर्जी जो हम यूज करते हैं जैसे कि हपला हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, तो इनके अपने हालांकि टीचर से ये भी हमें मिलते हैं अपने इसके नुकसान है और ये हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए है। पहला चीज तो ये है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए, एक समय आने पर ये खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज इन्वायरमेंट इतना हार्म पहुंच है इस चीज को लेकर, तो हम नेचुरल गैसेस को पृथ्वी से निकालते हैं या फिर कोयला को पृथ्वी से निकालते हैं, तो नेचुरल गैस को हम पृथ्वी से निकालते हैं तो अर्थ वाला वो बंजर हो जाती है। दूसरी चीज उससे का जो प्रोडक्शन होता है जो पूरे फिल्ट्रेशन के दौरान जो चीज हमें गैसेस जहरी गैसेस मिलती है, तो उससे बहुत सारे नेचुरल डिसएडवांटेजेस हैं। और जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की जो कि हमारे उस कन्वेंशनल से हट करके अनकन्वेंशनल ग्रीन एनर्जी से, तो इसमें ऐसा होता है कि वो सब चीजें जैसे कि नेचर को हानि है या फिर वो सब चीजें होती है, ये हमें प्योर ग्रीन एनर्जी मिलती है, उसके कंपेरिजन बहुत मस्त है। केवल पैनल बनाने के टाइम पे थोड़े से इन्वायरमेंटल नुकसान होते हैं जिसको हम नेग्लिजेबल मान सकते हैं, तो उस कंपेरिजन में तो बहुत है।
2: इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान भी नहीं करता। प्रिया, छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ के लोगों के लिए सोलर पैनल लगवाना कितना फायदेमंद होगा?
0: छत्तीसगढ़ में अगर सोलर पैनल लगते हैं तो फिर ज्यादा फायदा मेरे हिसाब से रूरल एरिया वालों को हो सकता है, क्योंकि जैसे कि रूरल एरिया में यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है, तो वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाते हैं। वो फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉल हो रहा है तो 4 to 6 years के बाद तो वो मतलब एकदम लो मेंटेनेंस है वो, तो उनको ज्यादा से खर्चा भी नहीं आएगा, वो उनके लिए बहुत बजट फ्रेंडली चीज हो जाएगी एक टाइम के बाद, और उन लोग को ऐसे दूसरे रिसोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ा कि उनको इरिगेशन या दूसरे डे टू डे लाइफ में जो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए उनको बाहर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा रूरल एरियाज में, क्योंकि एकदम रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर वहाँ सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर वो लोगों के लिए काफी ईजी हो जाता है।
2: छत्तीसगढ़ राज्य में खेती किसानी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लगभग आधे से ज्यादा लोग खेती किसानी करते हैं, ऐसे में उन्हें सोलर की आवश्यकता पड़ी है, खेती किसानी बहुत सारी चीज चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं ये सोलर वो पैनल है उनकी काफी हेल्प कर सकते हैं। नहीं
0: हाँ, क्योंकि वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसलिए स्कीम्स भी निकाल के रखा कि रूरल एरियाज को इसका बेनिफिट मिले सोलर एनर्जी का। पहला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे क्या है कि गवर्नमेंट घर पे सब सोलर इंस्टॉलेशन सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, और जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है अगर वो उनकी एक लिमिट एक्सीड करता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर होता है, इससे क्या उन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे रिडक्शन होता है, तो वो लोग फाइनेंशियल भी बेनिफिट हो जाते हैं। मतलब एक बार जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल हो तो 4 to 6 के बाद उसका जो भी कॉस्ट लगा था इंस्टॉलेशन का वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद वो फ्री टू हो जाता है। और सर सोलर पंप योजना गवर्नमेंट ने निकाली थी, वो सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप प्रोवाइड किए थे, तो इससे क्या है इरिगेशन इजी आता है और डीजल का कॉस्ट जो है वो सेव हो जाता है। ऐसे ही और रिमोट विलेजेस में उनके लिए सोलर ग्रिड इंस्टॉल कर रही गवर्नमेंट, तो ये सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने हमारे छत्तीसगढ़ में निकाली हुई, सारे रूरल एरिया की है सारी।
1: जैसे कि श्रेया ने बताया कि ये इंडिविजुअल लेवल पे और रूरल एरियाज के व्यक्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ऐसे सोलर का यूज करना, तो मुझे वो ध्यान आता है कि ये ऐसा इंडिविजुअल फिर घर के यूज की नहीं, अगर हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी देखते हैं तो इंडस्ट्रियल पे भी इसका बहुत यूज।
2: अगर हम बात करें हमारे बिलासपुर की, बिलासपुर में अभी देख रहे थे गर्मी का मौसम रहा और काफी तेज धूप पड़ रही है, तो ऐसे में बिलासपुर के लिए भी फायदेमंद है ना ये सोलर प्लांट इंस्टॉल करना?
0: हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई आ रहा है उस हिसाब से आई गेस सोलर एनर्जी का हमको बेनिफिट लेना चाहिए बिलासपुर भी। इससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रेज होंगे, जैसे कि यूजली यहाँ पे मौसम खराब होने के कारण पे 2-2 दिन तक की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई थी, तो अगर तारीख में ऐसे सोलर पैनल इंस्टॉल्ड होंगे तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि एनर्जी तो ऑलरेडी बैटरी में स्टोर्ड रहेगी, ऐसा है, हमको किसी पर

0: नहीं होना पड़े. सोलर पैनल्स घर में, स्कूल्स में, हमारे ऑफिस शॉप्स में इंस्टॉल्ड हो, तो वेदर अगर चेंज होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद भी हमको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड होती रही एटलीस्ट डेली के लिए.
1: हाँ डेफिनेटली, अगर हम बिलासपुर शहर बात करें तो अभी दो दिन पहले पूरे समय आंधी तूफान आने के कारण पूरा लाइट वगैरह पूरा चल गया था. तो उस स्थिति में अगर हम सर पैनल्स का यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एनर्जी स्टोर्स रहेगी इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जिसका हम ऐसे कंडीशन जब पूरे से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो तो यूज कर सकते हैं. तो अभी बिलासपुर में हुआ था ऐसा, तो सब सिचुएशन के बहुत जरूरी है ये चीज.
2: बिल्कुल, ये जरूरी है और बारे में लोगों को अवेयर ना भी जरूरी है. जितने ज्यादा लोग अवेयर है इसके बारे में जानेंगे, इतना इस चीज का फायदा भी उठाएंगे. अच्छा, जैसा कि हम कार्यक्रम अंत में आ चुके हैं, तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे इस बारे में?
1: मैं बोलना चाहूंगा, हमें इस चीज को समझ होगा कि हमारे लिए सोलर एनर्जी और इन चीजों को समझना और इसका यूज करना इम्पोर्टेंट है. सोलर एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है. अगर हम जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस के में देखें तो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्टर हो सकता है जियो पोलिटिकली. जैसे ही फ्रांस और इंडिया मिलकर के कुछ पहले ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, इसमें ऐसे आते थे जो कि वो ट्रॉपिकल जोन वाले देश आते थे. इसमें क्या होता था, इसमें एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि सारे वर्ल्ड से हम लोग सोलर एनर्जी के मामले में ग्रीन एनर्जी का यूज करें और आपस में देशों के बीच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिया ने लीड किया था. इसमें 121 कंट्री के लिए अपना सहमति दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सोलर सेक्टर हमारे इंडिया के लिए. तो इसमें इंडिया ने अपना एक इनिशियल लिया था जिसको हम सन वन अर्थ वन ग्रीड के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे कंट्रीज को जोड़ की बात हुई ग्रीन वर्ल्ड एनर्जी के माध्यम. तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है, मैं वो बताना चाहूंगा. जैसे कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, अपने आस पास के पड़ोसी देशों को लेकर उनको वर्ल्ड एनर्जी के फायदे बता रहा है और मदद कर रहा है कि आप ये अपने देशों में. इंडिया का प्लान है कि वो अपने आसपास कंट्रीज हो गए, 10 कंट्री आती है, 7 ही कंट्री हो गए, इन आसपास के देशों में वो मदद कर रहे हैं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए. उन सबको समुद्र माध्यम से, ऑप्टिकल के माध्यम से, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट करके एक दूसरे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. का आगे का प्लान ये है वो अफ्रीका जैसे देशों उनकी मदद कर, क्योंकि उनके पास लैंड भी ज्यादा है और काफी ट्रॉपिकल जो है वो देश है, क्योंकि मैं सूर्य की एनर्जी वगैरह का कोई मसला है तो काफी अच्छी मात्रा में वहाँ एनर्जी वो लोग जनरेट कर सकते हैं और उनके देश खराब भी हो सकते हैं. तो इस प्रकार से भारत की मदद कर रहे हैं और एक ग्लोबल लीडर की छवि भारत की बन सकती है अगर वो इस दिशा में काम करे. तो मैं यही कहना चाहूंगा, सोलर एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है. सोलर एनर्जी इज नॉट इलेक्ट्रिक सोर्स, हर एक फ्यूचर में हम इसे देख सकते हैं.
0: तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर ना क्लीन, स्मार्ट और देखा जाए तो सस्टेनेबल है. ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए. इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, हमारे एनवायरमेंट किसी तरीके हार्म नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रहा है, हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी हो जा रही है. जैसे कि हमको पता है वो एक नेचुरली अवेलेबल सोर्स है, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन इस पर डिपेंड हो तो वो काफी ज्यादा सिक्योर होगा. तो मेरे हिसाब से सोलर एनर्जी थ्रू इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर वो डिपेंड होती है कंप्लीट.
2: ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है हमारे इंडिया का सोलर एनर्जी में. आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Thank you.
3: तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत सौर ऊर्जा के बारे में हमारे दोस्त श्रेया और गौरव से. वैसे दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको अपनी बात कहने की आजादी ना हो, अपनी भाषा, अपनी पहचान या अपने सपनों को खुलकर जीने का हक ना मिले तो कैसा लगेगा? लेकिन खुशकिस्मती है कि हमारे लोकतंत्र की नींव ऐसे लोगों ने रखी जिन्होंने हर आवाज की अहमियत समझी. 11 मई 1949 वो दिन जब भारत की संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के राजनीतिक संरक्षण पर बड़ा फैसला हुआ था. आइए इस बारे में आप सभी को विस्तार से बताती हूँ. भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 11 मई 1949 के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता. ये वो दिन था जब संविधान सभा की अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति की बैठक हुई और उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक राजनीति की कमर तोड़ दी. इस तिथि से पहले भारतीय संविधान के मसौदे में विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाई और मुस्लिम के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान था. इसे बहुसंख्यक वर्ग द्वारा उन्हें दबाव में आने से बचाने के एक तरीके के रूप में देखा गया था. 11 मई

1949 को एच सी मुखर्जी के नेतृत्व में ईसाई नेतृत्व ने इन आरक्षणों को स्वेच्छा से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि ईसाई समुदाय एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहता है। ये भी उल्लेखनीय है कि विभाजन का कारण बनने वाला दो राष्ट्र सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि धार्मिक समूहों के राजनीतिक हित परस्पर विरोधी थे। इसलिए 11 मई को आरक्षित सीटों को अस्वीकार करके इसने संकेत दिया कि भारतीय गणराज्य धार्मिक गुटों का संग्रह नहीं बल्कि व्यक्तिगत नागरिकों का राष्ट्र होगा। ये ब्रिटिश काल की बांटो और राज करो नीति के लिए अंतिम प्रहार था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अलग अलग राजनीतिक पहचानों का इस्तेमाल किया था। उस दिन एच सी मुखर्जी का भाषण ऐतिहासिक है। उन्होंने तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका राष्ट्र के जीवन में समाहित हो जाना है। उन्होंने कहा कि ईसाई संसद में सीटों के दावे के बजाय भारत में अपने योगदान शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के लिए जाने जाना चाहते हैं। इस नैतिक श्रेष्ठता ने अन्य समूह को अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जिसके परिणाम स्वरूप अंततः धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संरचना के पक्ष में लगभग सर्वसहमति से मतदान हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की प्रतिक्रिया यह थी कि वे इस पहल से अत्यंत प्रभावित हुए थे। 11 मई की बैठक के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, समिति इस बात से संतुष्ट है कि अब वह समय आ गया है। अब अल्पसंख्यक समुदाय के विशाल बहुमत ने स्वयं यह महसूस कर लिया है कि आरक्षण प्रणाली को छोड़ देना उनके अपने हित में है। पटेल ने बाद में टिप्पणी की कि ईसाई समुदाय के निस्वार्थ भाव ने ही वास्तव में एक एकीकृत भारत का मार्ग प्रशस्त किया। 11 मई के फैसले ने 1947 के विभाजन के घाव से उबर रहे राष्ट्र को एक सुकून भरा स्पर्श दिया। उसने साबित कर दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में बिना किसी कानूनी बंधन के भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसने धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल कायम की जहां राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उनके आधार पर राजनीतिक विभाजन नहीं करता। 11 मई 1949 वो दिन था जब भारतीय ईसाई समुदाय ने राष्ट्र को विश्वास का उपहार दिया ये सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी ना कि धर्मों की संख्या का। दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ किताब के पन्ने नहीं, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों संघर्षों और उम्मीदों की धड़कन है। और सबसे खास बात, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं से नहीं चलता, आपकी आवाज आपके सवाल और आपकी जागरूकता भी से मजबूत बनाती है। तो इस 11 मई सिर्फ तारीख याद मत रखिए, उस सोच को याद रखिए जिसने भारत को हम सबका भारत बनाया। और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत जो कि है फिल्म कृष का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने फिल्म क्रिश का ये गीत सुना, जिसे लिखा है नासिर फराज ने, संगीत है राजेश रोशन का। तो अब वक्त हो चुका है श्रोताओं मेरे जाने का, फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सोनम का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवा जगत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम के बारे में। 7:20 पर आज ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोठ का विषय होगा वानिकी फसल के नर्सरी और रोजगार। इसके अलावा भेंटवार्ता का विषय होगा ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन।

इस विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर एकता ताम्रकार से बातचीत करेंगे बैसाखू भैया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7:00। रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे जावेद बशीर। 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा खरीफ के लिए धान की उन्नत किस्में और विशेषता। सुबह 6:45 पर चिंतन का विषय होगा मानव ईश्वर की अनमोल कृति। आलेख होगा श्री हेमंत राम पल्लीवार का। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा सुबह 7:05। इसके बाद 7:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम। नए तराने कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया और सुबह 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कल सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे विविधा। इसमें प्रथमेश मिश्रा और रॉबिन पुष्प जानकारी देंगे प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो विषय पर। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कल शाम 5:35 पर बहनों के कार्यक्रम महिला सभा में सामायिक चर्चा का विषय होगा सड़क सुरक्षा नियम, जिम्मेदारी और जागरूकता। साथ ही होगा क्रम स्वास्थ्य वार्ता का। कल 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बैरक रिपोर्ट का विषय होगा बर बिहाव माँ खाए पिए के जिनिस ला नुकसान झनकरब। इसके अलावा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में आप सुनेंगे। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। संपादन और रिकॉर्डिंग होगा वीरेंद्र निर्मलकर का। कल रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे भूपिंदर सिंह। 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं रजनीगंधा कार्यक्रम का। हम आपको एक बार फिर बता दें कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे विविधा। इसमें प्रथमेश मिश्रा और रॉबिन पुष्प जानकारी देंगे प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो विषय पर। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार कुछ ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर में करीन विशेष महापूजा। किहीन ए मंदिर हा अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हुई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री साय 75 पहली हुए पुनर्निर्माण लकरीन सुरता। और प्रदेश में होवैया नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई पर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया

आज ले हुई शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि सोमनाथ मंदिर हा अटूट आस्था, दिव्यता और देश के शाश्वत आत्मा के प्रतीक हरय। ओमन हकीन कि सोमनाथ अमृत परब हा सिर्फ अतीत के उत्सव नो हरय, बल्कि एहा अवैया हजार बछर तक देश के प्रेरणा बनही। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री हकीन है कि सोमनाथ हा लोगन मनला ए सुरता दिलाते कि कोनो भी

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री हा कहिन हे कि सोमनाथ हा लोगन मन ला ए सुरता दिलात हे कि कोनो भी राष्ट्र हा तभे लंबा बेरा तक मजबूती ले खड़े रही सकत हे जब तक ओहा अपन जड़ ले जुड़े रहे। प्रधानमंत्री हा कहिन कि 11 मई 1998 के 3 परमाणु परीक्षण करे गे रहिस जेकर माध्यम ले देश के वैज्ञानिक मन हा भारत के क्षमता के प्रदर्शन ला पूरा दुनिया के आगू करे रहें। एकर ले पहले प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर मा विशेष महापूजा करिन। ओमन हा मंदिर के शिखर मा कुंभाभिषेक घलो करिन। मंदिर के इतिहास मा पहली घाव शिखर मा 11 ठीक तीरथ वाले जगह ले लाए गए पवित्र जल ले अभिषेक करे गए है। श्री मोदी हा ध्वजारोहण कार्यक्रम मा घलो शामिल होइन और यही बीच वायुसेना हा एयर शो करिन जेमा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हा सोमनाथ के ऊपर सुघर करतब दिखाइन। हेलीकॉप्टर ले फूल के बरसा करेगी जेकर बाद श्री मोदी हा विशेष प्रदर्शन ला घलो देखिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुईन। ए बेरा मा उमन हा जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मन के संग गुजरात के सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअली जुड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ला घलो सुनिन। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि 75 बच्छर पहली आजे के दिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हो रहीस और यही ऐतिहासिक अवसर ला देश भर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाए जाते। उमना कहिन के सोमनाथ मंदिर में घेरी बेरी हमला होइस फिर मंदिर के आस्था और परंपरा ला खत्म नहीं करे जा सकेस। श्री साय हा कहिन कि पहली घाव आक्रमण के बेरा मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु मन हा मंदिर ला नहीं छोड़िन और अपन प्राण दे दिन। उखर त्याग हा आज घलो इतिहास में स्वर्ण अक्षर में अंकित हरय। मुख्यमंत्री हा बताइन कि प्रदेश मा देवी माता के मंदिर ला शक्तिपीठ योजना के माध्यम ले विकसित करे जाते। ऐसन है कबीरधाम जिला के भोरमदेव महादेव मंदिर ला स्वदेश दर्शन योजना के चलत 148 करोड़ रुपया के स्वीकृति मिले है। एबेरा मा वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम हा मौजूद रहिन। प्रदेश भर के कतकुन जिला मा घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन हुईस। उहें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा घलो भोरमदेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुईन। ए बेरा मा उमन हा श्रद्धालु मनला संबोधित करत हुए कहिन है कि ये कार्यक्रम हा भारत के पुरातन संस्कृति और सभ्यता ला सुरता करे के मौका हरय। ऐसन है जांजगीर चांपा जिला के धार्मिक नगरी खरौद मा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय मा श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर मा विशेष कार्यक्रम होइस। ए मंदिर परिसर मा गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी मा हुए कार्यक्रम के सीधा प्रसारण दिखाए गिस। कार्यक्रम मा सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महुबे समेत बड़का संख्या मा श्रद्धालु मनाए रहिन। प्रदेश के कतकुन जिला मा घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन करेगिस। केंद्र सरकार हा विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन पर अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम हा 101 जुलाई ले देश भर में लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पश्चिम एशिया संकट के चलत लोगन मन ले 1 बछर तक सोना झन खरीदे, ईंधन की खपत कम करे और विदेशी मुद्रा ला बचाए के आग्रह करीन है। हैदराबाद मा काली एकठिन कार्यक्रम मा श्री मोदी हा वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था ला एक घाव फेर शुरू करे के अपील करीन है। प्रधानमंत्री की अपील हा ऐसन बेरा मा आई से जब पश्चिम एशिया मा बाढ़त तनाव और होरमुज जल डमरू मध्य के तीर तखार के परेशानी के सेती वैश्विक कच्चा तेल के कीमत हा सरलग $70 प्रति बैरल ले बाढ़ के लगभग $126 प्रति बैरल हो गए है। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन है कि पश्चिम एशिया में जौन युद्ध के स्थिति बने हुए है ओखर असर

0: दुनिया भर म पड़त हे अउ ओकर ले हमर देस ह घलो अछूता नहीं रही। एखरे सेती प्रधानमंत्री ह देश के लोगन मन ला बड़ जरूरी अउ सही सलाह दीन हे। प्रदेश में होवैया नगरीय निकाय अउ त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम अउ उपचुनई बर नामांकन पत्र भले के प्रक्रिया ह आज ले शुरू हो गए हे, जौन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र के जांच 19 मई के करी जाही अउ उम्मीदवार मन ह 21 मई तक अपन नावला वापिस ले सके। मतदान ह एके चरण में 1 जून के होही, जबकि परिणाम ह 4 जून के आना है। जानबा के अनुसार नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनाई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनाई कराए जाएं। नारायणपुर पुलिस हा आज सामुदायिक पुलिसिंग ला मजबूत करे के उद्देश्य ले माण मैत्री अभियान की शुरुआत करी। नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया हा बताइन के अभियान के उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्र के जवान लयिका और यहां के रहैया मनला शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक गतिविधि ले जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के चलत सामूहिक जुम्बा सत्र घलो हुई। एबेरा में डायल 112 वाहन सेवा, माण मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम लघलो हरा झंडी दिखा के भेजे गई से। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले छिपा के रखे गए सामान ला जब्त कर ले है। पुलिस ला सूचना मिले रहीस के डोडी तुमनार गांव के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी मन सामान ला छिपा के रखे है। एकरे आधार में पुलिस सहायता केंद्र पीडिया और गंगालूर थाना के संयुक्त टीम सर्च अभियान चलाये। एबेरा में भुइया के भीतरी छिपाए गए एक ठीक बंकर घलो मिले है। सुरक्षा जांच के बाद वहां ले बड़का मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार, बैटरी, सोलर प्लेट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल ला बरामद करे गए है। धमतरी जिला में 1 महीना तक चलैया समर कैंप के शुरुआत 9 मई ले हो गई है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय ले चलत एक कार्यक्रम और ये समर कैंप 8 दिन तक चलही, जेमा खेल तकनीक के संगे संग व्यक्तित्व विकास में विशेष जोर दे जात है। रायपुर के खम्हारडी थाना क्षेत्र के लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिचर और इतवार के रतिहा करीब 1 करोड़ रुपया के सोन चांदी के गहना की चोरी हो गए है। इतवार के दुकान बंद होए के स्थिति एक जानकारी कारोबारी ला तुरते नहीं हो पाईस, फिर सोमवार के बिहनिया जब वह दुकान खोलिस तब ए चोरी के घटना के पता ओला लगिस। पुलिस दुकान और तीर तखार में लगे सीसीटीवी कैमरा ले मामला की जांच करत है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी ले लेके श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बने हुए हैं। एकर संग ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा विस्तारित है। एकर ले अवैया 48 घंटा में अव प्रबल होए की संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में करीन विशेष महापूजा, किहीन ए मंदिर अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हुई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री साय, 75 बछर पहली हुए पुनर्निर्माण लकरिन सुरता। औ प्रदेश में होवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई बर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले हुई शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी की पसंद से। रोहिदास चौक पंठरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा गोट के। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी भारती। लक्षनपुर जिला बलौदाबाजार से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। ओवरेठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा।

स्वानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से हैं। नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन जी, शान अहमद, शाहनवाज अहमद और उनका पूरा परिवार, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर वैशाली से हैं। वैशाली शैलेश, श्वेता, सुमित, कुमारी धनी और कुमारी परी, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, जेबा, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम, दानिश, सारिमपुर बक्सर से राज, एच डी अंसारी, असलम अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, आसमा खातून अंसारी, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाहबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल आर्य, बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, ओढ़ो सिटी अहमदाबाद से महिमा, रूपल, राधिका शिमाली, बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभा, दीपाली, श्लोक, बुलढाणा इस्लामपुर से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला, साधना और सुमेध, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीश, पटेल नगर मलौट से रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, ये हैं जमशेदपुर स्टेशन रोड से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। चले सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सावन को आने दो का ये गीत। स्वर है ये सुदास का, बोल हैं पंडित पंकज के, संगीत है राजकमल का।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई राजकुमार बुडाना। आदलपुरा गुगामा से संजय बामनिया, माया कान्हा कृष्णा। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजीता। गोवर्धन रोड मथुरा से दुर्गा कुमारी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद अजरा तबस्सुम। रायपुर अनेक जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। झुमका सिटी बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम अंसारी, सर्वेश सैनी, डीजे प्रधान। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण पुजारी। कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुम्हार। रमा जांजगीर चांपा से हैं दिलदार मिरी, ज्योति जाह्नवी, दीक्षांत मिरी। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा, डब्लू अंसारी। गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, रवप्रीत, कमर जीत कौर। भुतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। फ्रांसी हिसार से राजकुमार डी, प्रमोद कुमार, सौरभ। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। राज पैलेस मौनत भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू। ग्राम पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन पांडे। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म चमत्कार का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक की, आनंद बख्शी की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर अगला गीत। फिल्म का नाम है चांदनी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और बबला के। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शिवहरी ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना परवीन, नाजिया इब्राहिम। रैया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा प्रथम, स्वाति ख्याति। पलारी से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। लोतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श आतिका। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोकेलाल वर्मा। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश। पोटियाखला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा। कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे। मस्तानपुरा पुणे जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना, चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला। गांव जामथडा कच्छ गुजरात से गंगा वड़कर, प्रीति जोली, गीता महिमा। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज, बेबी चाहत। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी, निन्नी पम्मी, सिया, हर्षिता, निशांत। नीला बोड़सरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद। नेवासा से अमोल लोखंडे, शारदा। ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पुर्णेन्द्र और साहिल। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना, रमन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि। पद्मा टाकेज नेपनगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र। बिहार स्टेट डुमराव से आसमान सारी, आमना वलीउल्लाह। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार जोई, गुड़िया यामिनी, उमा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार। गिर्रा पलारी से हैं वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म चांदनी का ये गीत।

0: फिल्म चांदनी के इस गीत के बाद लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 को स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा फलोद्यान की स्थापना एवं फूलों की उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592, और फोन लगाने से पहले बिलासपुर का स्टडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 14 मई और 15 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 6:45 होने को है। समाचार प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: भाई साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
12: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
11: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
14: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
13: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने

0: कहा कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
1: आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
0: इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेता मौजूद थे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यता के गौरवपूर्ण स्मरण का अवसर है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी खरौद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय पर श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उधर बालोद के कपिलेश्वर शिव मंदिर में राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही जिले के अन्य प्राचीन शिवालयों पलारी तथा बालोद विकासखंड के जगन्नाथपुर स्थित शिव मंदिर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किए जाने की खबर मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को बहुत महत्वपूर्ण और उचित सलाह दी है।
1: पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए, इसके लिए डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छुपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम डोडी तुमनार के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने सामग्री छिपा रखी है। इसके आधार पर पुलिस सहायता केंद्र पीड़िया और गंगालूर थाने की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान जमीन के अंदर छिपाया गया एक बंकर मिला। सुरक्षा जांच के बाद वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार, बैटरी, सोलर प्लेट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल बरामद किए गए। नारायणपुर पुलिस ने आज सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से माड़ मैत्री अभियान की शुरुआत की। नारायणपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं और ग्रामीणों को शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और

0: सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के तहत सामूहिक जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया। इस दौरान डायल 112 वाहन सेवा, माड़ मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1 करोड़ के सोने चांदी के जेवरों की चोरी हो गई। रविवार को दुकान बंद होने के कारण इसकी जानकारी कारोबारी को नहीं हुई। सोमवार सुबह जब उसने दुकान खोली तब चोरी का पता चला। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर तक बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है। इसके अगले 48 घंटों में और प्रबल होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। धमतरी जिले में 30 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत 9 मई से हो गई है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय से आयोजित यह समर कैंप 8 जून तक चलेगा, जिसमें खेल तकनीक के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और सक्ती जिले के चंद्रपुर के बस स्टैंड के पास आज एक वाहन में हवा भरते वक्त एयर स्टोरेज टैंक फट गया। इस हादसे में वाहन मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
7: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
12: बेटा
11: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
12: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
12: चलो
11: कहाँ?
12: एडमिशन कराने,
7: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
13: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
14: ब्रो ये फटा है।
15: सुन, कटे फटे हैं पुराने नोट को
16: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
15: वाओ, नया नोट मिलेगा?
16: हाँ,
15: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
16: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो कूल रहो।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनी का शेष भाग। पहला गीत है फिल्म मौसम का, भूपेंद्र और लता की आवाज।

आवाजों में गुलजार के शब्द हैं मदन मोहन का संगीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। ग्राम बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार, वंशिका, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी, शुभम, सौरभ, ग्राम गतौरा से बोधिराम, आर्यन, शंकर, अमन, सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्रप्रकाश लहरे, डोंडी लोहारा बालोद, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, आरती, प्रभा देवी, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, रसीद वारसी, नवेद हसन, सुहेल हसन, यशफ अनम अब्बासी, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू, नरेश मल्होत्रा, ज्ञानभूषण शर्मा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका, रानीगांव नगरी जिला धमतरी से हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल। ये हैं छत्तीसगढ़ चोड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर कौसर, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन, रजा और फातिमा, जेल रोड बक्सर से असलम आजाद, मुस्तफा तन्हा, शमसुल हक, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, संभाजीनगर महाराष्ट्र से हैं अनिल कुमार घोटके, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यज्ञेश, कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रेमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ, तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष, विवेक, बेबी आयुषी, ग्राम लसोडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र, बाबा कुटीर रायगढ़ से श्री कुमार चौहान, संक्रांति, उत्कर्ष, कुमार गले श्री रामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले पुणे से हैं अजय, सोनवनी, करिश्मा और अविका, ग्राम पंचायत बोरी खुर्द से श्री सुधाकर, राज जाधव, प्रशांत, जगुताई और संचित, उनका पूरा परिवार, बेताब रेडियो क्लब बिहार से हैं वसीम अकरम, शबनम, गुड़िया खातून, रायपुर से विनोद मंडलकर, वीणा और विविधा, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस रेहान, अनारकली बाजार जगरों से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, पूरब, वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल, सिंगरौल, नारायणी, नुमेश, नेहा और वान्या। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मौसम का ये गीत।

ईमेल करेंगे। सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:23 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 14 मई 2026 को स्टूडियो में विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा फलोद्यान की स्थापना एवं फूलों की उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी

कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 14 मई और 15 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी की पसंद का गीत। नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया। सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, रेशमा।

डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य कोयल लाडो और नानक चंद्र मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कुनिका डुग्गू रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू नंदनी मनीष मयंक जानकी अमृतसर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारणी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा दतरंगी से हैं ये किशोर कुमार वर्मा दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी बब्बू डब्बू ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति श्रीमती सविता घनश्याम राम हरिशंकर रत्नेश कुमार प्रशांत ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता पांडेराम बरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे कमल दिव्या जय ग्राम पेपर लोड सरगांव से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश तिवर्ता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरगाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा सुरेंद्र मोहन सिंह मनमोहन सिंह गिरजाबाई चंद्रपाल मरावी बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर श्रीमती प्रिया मास्टर ओमी कुमारी समीक्षा ये हैं करणवीर हाउस भुचो कैचिया से परम सिंह जोड़ा मंजीत कौर करणवीर दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम दमन अभिजोत मनकी से नारायण खांडे रजनी तुषार समीर पलारी से हैं प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल यशस्वी लक्षणपुर से रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम मुकेश कुमार छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद सलमा बेगम रेहान फैजान अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान आयशा अनस रेहान पिपरिया से कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रीमती श्रद्धा अदिति राधे गुप्ता दीपक गुप्ता अंकु राघव गुप्ता यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद खड़ से बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकर रणवर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल संजय अंशु राजिम रजमत गांधी चौक बड़मेर राज से बबलेश पवार डैनी मनीष शास्त्री नगर बिट शहर से किशन सपकाल आशा सोनिया विशाल काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल सरोशी सुषमा परिधि मायरा देवरी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रजक मुरली क्षत्रिय चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म प्रेम रोग का गीत आवाजें हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की शब्द हैं संतोष आनंद के संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का

करेंगे सुने कार्यक्रम में अंतिम गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव, बड़खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अड़ान नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोपराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, डुंगड़गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजु योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, चिरमिरी कुरासिया, कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश कालिंद्री लहरे। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म खुद्दार का गीत। राहत इंदौरी की रचना है, अनु मलिक का संगीत है।

कुमार सानू अलका याग्निक के गाए फिल्म खुद्दार के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनने का शेष भाग अब समाप्त होता है। रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आइए अब चलते हैं ग्राम सभा कार्यक्रम की ओर।

राम राम। संगवारी हो, जैसे ही हमन अक्ति तिहार मनाथन ओकर बाद हमन अपन जो खेती किसानी के बूता काम भद्रा जाथन, यानी कही त जोन हमर खरीफ फसल के धान पान के ओकर जो तैयारी है, बीजा भात है, खेत के तैयारी, जोन घुरुआ में खातू माटी है ओकर हमन गाड़ा बिला में फेंके के शुरुआत करथन। आज कहीं न कहीं हमारे कतिक किसान भाई मन अभी बेरा में जिनकर गाड़ा बैला और वाहन के साधन हावे ते मन अभी मस्त खेती किसानी के जोन गोबर खाद है ओकर छिड़काव करत है कहीं तक खेत के तैयारी में। एकर संगे संगे और हमारे कतिक किसान भाई मन ऐसे हावे जे मन खेत के तैयारी में माटी मन के देखभाल संगे संग ओकर माटी की जाँच कराई और कई प्रकार के ऐसे बूता काम हमें जेला करत हवे। बात करबो संगवारी हो, खेती किसानी में सबसे ज़्यादा हमारा चेत करे के आवश्यकता होते कि हमन अवैया बेरा में का का फसल हमन ले सकत हन और फसल के माध्यम से का का फसल में हमन अच्छे से अच्छा रोजगारी स्थापित कर सकत हन। आए दिन अपन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कति ले हमारे जो बीच में सफल किसान भाई मन करा भेंट वार्ता हो रहे थे, गोड़ बात हो रहे थे, वो गोड़ बात ला अपन के बीच में परोसथन कि ओ मन अभी बेरा में कैसे आनी बानी के खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाते, चाहे मछली पालन होए, बकरी पालन होए, मुर्गी पालन होए, बनेच कल ऐसे बूथा काम हावे संगवारी हो जेला हमन खेती किसानी के संगे संग और बूथा काम करके दोहरा आमदनी कमा सकत हन। काबर अपन जानते हवा अगर हमन खेती किसानी में ही अगर घर परिवार चलाबो किबो तो बिल्कुल नहीं चल पाए, काबर कि यह तरह के महंगाई और महंगाई में और अभी के धान पान के भाव कही तो अपन जानते हवा कि खेती किसानी में ही हमर घर परिवार चलना बहुत ही मुश्किल हवे। आए दिन अपन ला हमर किसान भाई मन के जो अनुभव रहते ओला परोस्थन मन बताते कि कैसे खेती किसानी के संग संग दोहरा बूता काम करके ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा कमाते। जिसे बात करबो संगवारी है वानिकी नर्सरी ले रोजगार हमन कौन प्रकार से करी, कतिक किसान भाई मन ऐसे हवा जे मन खेती किसानी के संगे संग बाड़ी बकरी के संगे संग वानिकी क्षेत्र में जुड़ के अच्छा ले अच्छा रोजगार स्थापित करत हवन। अब आज जिसे हमन नर्सरी तैयार करत हन तो अवैया जोन बेरा हवा जेमा बरसात आवत है वो बेरा भी हमन अच्छे से जो छोटे छोटे पौधा हवा वाला हमन बेच के दोहरल दोहरा आमदनी कमा सकत हन। और कतेक किसान भाई मन अभी ले कर तैयारी में है और कतेक किसान भाई मन जिसे बरसात खत्म होते वही बेरा ले शुरुआत करते, और आज हमारे बीच में कतेक जन ऐसे किसान हवे जे मन एकर वानिकी क्षेत्र में जुड़ के अच्छे से खुद तो 2 रुपया कमाते संगे संग गाँव के लोगन मन घलो रोजगार स्थापित कराते। अवैया बेरा बरसात आवत है संगवारी हूँ तो अभी से अगर हमन तैयारी करत हन कि कैसन भुइया में हमन का चुनाव कर सकी, कैसन पौधा हमन लगा सकी ताकि अवैया बेरा में हमन ज़्यादा से ज़्यादा हमन आमदनी कमा सकी। वानिकी पौधा में जैसे बात करबो संगवारी हो तो फल फूल तो अवेज करते संगे संग जो जड़ी बूटी है ओकरो ज़्यादा महत्व हवा है और कहीं ना कहीं एकर आमदनी है ज़्यादा रहते। जैसे कि कीमती जैसे लकड़ी हवा वाला कई प्रकार के हमन आनी बनी के घर के सजावटी सामान कुर्सी टेबल दरवाजा कई प्रकार के हमन ओला उपयोग करके ओकर से हमन अच्छे से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। और जड़ी बूटी ला अपन जानते हो संगवारी हो आज भी हमार जो जंगली क्षेत्र में किसान भाई मरत है हमार संगवारी मरत है ओमन जानत हवा कि जड़ी बूटी के माध्यम से वनोपज के माध्यम से कते कन मन दोहरल दोहरा आमदनी कमाते। जैसे कि बेल हवाए अमली हवाए आमा हवाए कायत थे और जाम है ऐसे बनेच कन रुख हवा है जेला हमन अगर अभी से पोसा थन पाला थन तो कहीं न कहीं अवैया बेरा में ओकर से हमला दोहरल दोहरा आमदनी हमला प्राप्त हो सकत है। जैसे बात करी हमन वानिकी नर्सरी अगर लगावा थन तो सबसे पहले हमला ओकर से जुड़ेल पढ़ी कौन प्रकार से हमन ओला देखी जानी और समझी तो एक बार हमला सबसे पहले हमला भुइया के चुनाव करना पड़ते कैसन भुइया मेला हमन लगाई ताकि पानी के ठहराव अच्छे से रहे, यानी एला पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है शुरुआती बेरा में काबर के भी गर्मी बेरा है और संगे संग ऐसे भुइया चुनी जेमा पानी ठहराव और संगे संग निकासी भी आसानी से हो सके। शुरुआती बेरा में अगर बात करी संगवारी हो आधा एकड़ में भी अगर हमन अच्छे से लगावा थन तो कहीं न कहीं में हमन अवैया बेरा में दोहरल दोहरा आमदनी कमा सकत हन। शुरुआती बेरा में आधा एकड़ करत हन तो हमें पानी के ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़े और ज़्यादा मजदूर भी नहीं पड़े कहीं तो 2-4 जन मनखे करके आराम से हमन आधा एकड़ जो खेत है वहाँ वानिकी जो पौधा है ओला हमन नर्सरी के रूप में तैयार कर सकत हन। कई बार ऐसे होते कि हमन लोहा लोहा में चुनाव नहीं कर पान कि कौन कौन पौधा हमला लगाना चाहिए तो आपन बता देतन कि अगर हमन अवैया बेरा में ज़्यादा से ज़्यादा हमला आमदनी

माना है। तो हमला सबसे पहली सैगोन है, बांस है, खम्हार है, आंवला है, अमली है, ये मला हमला ज़्यादा से ज़्यादा हमला चेत करना चाहिए। संगे संग आज देखो तो हमारे कते किसान भाई मन रेशम पालन घलो करते हैं। तो अगर हम अर्जुन के पौधा लगाथन तो ओकर से हमन दोहरा आमदनी कमाथन। और कते किसान भाई मन ऐसे हवा जे मन आज देखबो तो 2 एकड़ 3 एकड़ में जौन लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, ओकरो खेती करत है, ओकर से भी अच्छा आमदनी कमाते। कतेक संगवारी मन ये सोचते कि हमार का तो खेत बस आवा है तो खेत में कैसे लगाबो, धान लगाबो कि रुख रही लगाबो कि के, तो आप बता देते हैं। कतेक ऐसे किसान हवा जे मन का करे है कि खम्हार के जो रुख हवा है, जो पौधा है, खेत के मेड़े मेड़ में धुरिया धुरिया में लगा के उमन अच्छे से आमदनी ओकर से कमात हवा। तो बस हम शुरुआत करें संगवारी, कौन पेड़ ला हम लगाई, कौन पौधा लगाई, ताकि हम वैया बेरा में ओकर से आमदनी कमा सकत। एक बात और हमारे चेत करे की आवश्यकता होते, अगर हमने वानिकी क्षेत्र में जुड़त हन तो एक बार हमें विशेष करके प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यकता हवा। बगैर प्रशिक्षण के अगर हम कोनो प्रकार के काम भी करबो तो देख रेख में कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा कम नुकसान होने के संभावना होते हैं। काबर की पौधा में नन्हे नन्हे रहते और नन्हे नन्हे पौधा ला जतन करे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घलो होते हैं। कैसे हाँ पानी देना चाहिए, कतेकन पानी देना चाहिए, का ओमा दवाई पानी लगते, एक बार हम विशेष करके जो वन विभाग कति प्रशिक्षण होते वहाँ हम जाके नर्सरी में हम अच्छे से प्रशिक्षण लेना चाहिए। अगर कोनो प्रकार की नर्सरी तैयार करत हन तो एक बार हमारा वन विभाग या निजी नर्सरी के तहत हमारा पंजीयन घलो कराना आवश्यकता है। काबर की अवैया बेरा में अगर रुख रही बाढ़ गए तो हम बेचे में थोड़ा कन आसानी हो सके। बिगर बिना पंजीयन के अगर हम रुख रही बेचत हन तो कहीं के एक से हमारा नुकसान होकर घलो संभावना थे। तो देखा बरसात के दिन आते तो सबसे ज़्यादा हम का करते हैं कि जो तरिया पार है और खेत खार है, मरघटिया है, यानी कई तो जो भाटा भुया जगह हवा है ओमा हमन अच्छे से चयन कर सकत हन। ओमा ज़्यादा से ज़्यादा हमन रुख रही लगा के दोहरा आमदनी कमा सकत हन। कार के बरसात के बेरा ऐसे बेरा रहते संगवारी हो जेमा कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा रुख रही लगा सकत हन। ज़्यादा हमन पानी पलो के आवश्यकता नहीं पड़े बल्कि कम पानी में ही हमन अच्छे से ओकर देखभाल कर सकत हन। खेत की तैयारी की बात करी संगवारी हो तो गर्मी घानी हमें अच्छे से कर जोताई करना चाहिए 2 से 3 बार ताकि माटी भुरभुरा रहे और इला हो सके तो हम अच्छे से निंदाई कोड़ाई घलो करा दी ताकि कोनो प्रकार के बंदू भी झड़ रहे। कार के पौधा नान्हे नान्हे रहते तो हम कई प्रकार के जो पौधा ला बाढ़े नहीं देवे कबर की बंदू भी ज़्यादा रहते। तो खास करके हमारे गर्मी के बेरा में अच्छे जोताई करा था वो गड्ढा कर देते ताकि जैसे बरसात आवा थे हम पौधा ला रोपित कर सकत हन। कते किसान भी मन जो उनकर पॉलीथीन है उमा भी मन लगाते उमा हल्का मात्रा में गोबर खाद और माटी करके हम अच्छे से वाला लगा सकत हन। एक संगे संग जैसे बात करी संगवारी फसल कौन प्रकार से मन चुन सकत हन। हमला हल्का वाला है ओला हम ज़्यादा हमला ध्यान देना चाहिए ताकि अवैया बेरा मन ज़्यादा से ज़्यादा हमला ओकर से पैदावार ले सकत हन। कई बार ऐसे होते कि हमन जौन खुद बीज ला के बाजार ले हमन ओला पौधा उपजाए के प्रयास करथन तो हमल प्रमाणित जो बीजा हवा वही बीज ला हमन ला लेना चाहिए ताकि ओकर से ज़्यादा हमला नुकसान झन हुए। जे प्रकार से हमन धान पान या फसल बीजा ला उपचारित करथन बिल्कुल वैसे हमला जौन वानिकी बीजा लावाथन ओला हमन ला टाइकोडर्मा ले हमला अच्छे से उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। उपचारित करथन तो कहीं ना कहीं जो रोग रही है ओकर से हम निदान पा सकत हन। आज सरकार कतेक ऐसे योजना संचालित करे संगवारी हो वानिकी के क्षेत्र में जेमा हमन वहाँ विभाग के अधिकारी बनकर अगर संपर्क करतन तो कहीं न कहीं वानिकी योजना के माध्यम से हमन जो घर में खाली भुया जमीन है, टिकरा है, तालाब आर है, नंदिया का छार है, यहाँ हमन अच्छे से रुख रही लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सकतन। काबर सरकार अगर योजना दे है तो योजना में हमें ज़्यादा रुपया पैसा लगाए के आवश्यकता नहीं पड़े बल्कि वहाँ के अधिकारी कर अगर हम संपर्क करतन तो जौन जौन कागजात लगत हवा ओला अगर जमा करबो तो कहीं न कहीं हमें सरकार के तिल वानिकी क्षेत्र में जो योजना है ओकर से हमें लाभ प्राप्त हो सकत है। संगवारी हो अगर अवैया बेरा में ए प्रकार के अगर हम खेती करतन तो कहीं न कहीं हमें वानिकी क्षेत्र में खुद तो 2-4 रुपये कमाबो साथ ही साथ गांव के लोगन मन भी रोजगारी स्थापित कर सकत हन। और सबसे बड़े फायदा ये हवा है कि अभी गर्मी बेरा चलत हवा और देखा था कि कतका तापमान बढ़त जात हवा और जितके ज़्यादा हम रुख रही लगाबो तो कहीं न कहीं तापमान भी कम हुई और ठोको बेर में पानी बरसात घलो हुई तो हमारे खेती किसानी के बहुत काम भी हुई और संगे संग हमला चिंहा
घलो में।

अब कहे जाते ना एक पेड़ है अगर लगावा था तो हमला छैया घलो देते फल फूल घलो देते। देखा गोड़ बात अपन कर अबड़ कर दारेन आवा सुनथन संदेश आलम।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो संगवारी हो संदेशक पहली जिसे हम गोड़ बात कर रहे हैं कि जितके ज्यादा हो हमन वानिकी क्षेत्र में अगर हमन जुड़ा थन तो कहीं न कहीं होकर से हमन दोहरा आमदनी कमा सकते थन। संगवारी हो कार्यक्रम संबंधित तापमान पर एक सूचना हमें प्रत्येक बृहस्पति शुक्रवार के संजक 7:30 से 8 बजे के बीच में अपन पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित कर जाते हैं, जब किसान भाई मन पर कृषि उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन और स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए पर हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में बुला थन जे में अपन फोन करके समाधान पा सकत है। यही कड़ी में संगवारी हो बृहस्पत के 14 मई 2026 के स्टूडियो में पहुना आही विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला। तो आपन संगवारी हो 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सवाल कर सका था। तो पहली बेरा के जो विषय हवा फलो ज्ञान की स्थापना, फूलों की उत्पादन तकनीक, और जो दूसरिया बेरा हवा 11 से 11:30 बजे के बीच में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन और तकनीक, और ए विषय के समस्या के समाधान पाए बर आपन हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर के माध्यम से फोन करके समाधान पा सकता था। हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर है 266-592। संगवारी हो फोन लगाए के पहली आपन बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाएला झन भूला हा। बिलासपुर के एसटीडी कोड है 07752। संगवारी हो एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 संध्या 7:30 से 8 बजे के बीच में सुन सका था। बड़ा थन कार्यक्रम के आगू गति जय प्रकाश संगवारी हम जंगल के कल्पना करथन कि जंगल आज अंधाधुंध कटाई हुआ थे, अगर अवैया बेरम हमन ज्यादा ज्यादा रुख रही लगावत हन तो कहीं न कहीं हमारा जो गर्मी बढ़ाते ओकर से हमारे निदान मिल सकते, संगे संग हमारा कीमती लकड़ी घलो प्राप्त हो सकते, और जंगल के माध्यम से आज कहीं न कहीं हमारा जो गाँव के लोगन मन है उमल अच्छे से कर से रोजगार घलो मिलते। संगवारी आवा दुखिया भाई मरकाम के गाय गीत ला सुनत हन।

0: सुना संगवारी हो दुखिया भाई मरकाम के गाय सुगर गीतला और कहत भी रही सावे कि जंगल जंगल खोजन गे के जब तक रुख है लगावनी संगवारी तब तक हमार जिंदगी है बिल्कुल नहीं चला। काबर की यह तरह के घाम करा थे तापमान बड़ा था वे तो अपन कर यही आग्रह करवो कि अवैय बेरमा सबले ज्यादा हमारे रुख लगाई तालाब पार नंदिया तीरमा संगे संग जो गली खोल हवा है जहाँ जहाँ जगह हवा मंच है तालाब किनारे है मरघटिया है जहाँ जहाँ हमला जगह मिलत है वहाँ वहाँ हमन जितके ज्यादा हुए हमन वो रुख लगाना चाहिए। संगवारी कार्यक्रम संबंधी तापमान नंबर का सूचना हुए प्रत्येक बृहस्पति और शुक्रवार के संजय कन 7:30 से 8 बजे बीच में फोनिंग कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिसमें किसान भाई मन पर कृषि उत्पादन पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए पर विशेषज्ञ के रूप में हमार पहुना मल्ला बुलाथन जिसमें अपन सवाल करके समाधान पा सका था। यही कड़ी में बृहस्पति के 14 मई 2026 के स्टूडियो में पहुना आई विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला। तो संगवारी हो अपन 10:30 बजे के बीच में 11 बजे बीच में फोन कर सका था। पहली बेरा के जो विषय हवा फलों ज्ञान की स्थापना और फूलों की उत्पादन तकनीक जो दूसरिया बेरा हवा 11 से 11:30 बजे के बीच में विषय है ड्रैगन फ्रूट उत्पादन तकनीक। ये विषय के समस्या के समाधान पाए बार संगवारी हो अपन हमार आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर के माध्यम से फोन करके समाधान पा सका था। तो जो पहली बेरा के जो फोन नंबर है संगवारी हो 266-592 अब फोन लगाए के पहले अपन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन एसटीडी कोड है वो लगा ला जन बुला। तो हमारे बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752। एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 के संजयकन 7:30 से 8:00 बजे बीच में अपन सुन सका था। संगवारी हो बेरा हवा अभी के हमारे किसान भाई मन आनी बनी के खेती से निकल रहे थे खास करके बात करी ग्रीष्मकालीन में और कते किसान भाई मन ऐसे हवा जन पहले की बेरा में खेत की तैयारी कर चुके हैं और आने बनी के सब्जी के प्रबंधन घलो कर चुके हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हमन फसल तो लगाथन खेती किसानी करथन बारी बारी लगाथन लेकिन हमन बीजा भात या सब्जी के जो बीज है ओकर तैयारी ला कौन प्रकार से करी एक बारे में हमन ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकन तो कहीं ना कहीं हमन ला थोड़ा का नुकसान होकर संभावना घलो होते काबर की कौन प्रकार से हमन ला तैयारी करना चाहिए कैसे न माटी में का हमन फसल लेना चाहिए संगे संग अभी बेरा में का हमन फसल ले सकी ताकि ज्यादा से ज्यादा हमन उत्पादन ले सकतन। यही क्रम में संगवारी हो आज के भेंटवार्ता हवा ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समन्वित प्रबंधन हम कौन प्रकार से करिए पौना हवाए डॉक्टर एकता ताम्रकार एमन हवाए विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर और इनका कर गोड़ बात करे हवाए हमारे संगवारी हरीश माड़वा तावा सुनतन संगवारी हो ग्रीष्मकालीन में सब्जी समन्वित के प्रबंधन हमन कौन प्रकार से करिए।
1: तंगी हो जैसे कि हम जानत हन कि अभी के बेरा में कई बात के ध्यान रखे बर पड़ते ऐसने अभी गर्मी के टाइम चलत है एमा कई प्रकार के साग भाजी होते एमा कीट बीमारी होते एक नियंत्रण करना अबड़े जरूरी है। तो आज हमारे फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हवे आप हो एकता

0: ताम्रकार विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के। तो ताम्रकार जी, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय जोहार।
1: जय जोहार बैसाखु भैया।
0: आप हमला जैसे बताहा आज के विषय घलो है कि समन्वित कीट नियंत्रण ए मौसम मा ग्रीष्मकालीन सब्जी मा। तो ये बताहा कि कौन कौन से कीड़ा है ये गर्मी के टाइम में आते सब्जी मा।
1: जी भैया, ये बहुत अच्छा जानकारी हमारे किसान मन में रही है। हाँ, जैसे कि ये बात होते गर्मी के सब्जी, ठंडी सब्जी, मन समझ नहीं पाए का होते। आजकल हर मौसम में हर सब्जी मिल जाते,
0: जी जी
1: बाहर ले आ जाते हमारे किसान भाई, मन समझ नहीं पावे। बहुत झन मन हमू मन यही समझते कौन से सब्जी गर्मी खरे फिर ठंडी खरे। तो
0: हाँ
1: गर्मी के सब्जी हमारे मुख्य रूप से भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, मिर्ची, करेला, खीरा, टमाटर, बैगन, तो रही बरबट्टी, टिंडा, ये सब मुख्य रूप से गर्मी में लगाए जाते हैं, उखाए जाते हैं।
0: अच्छा
1: क्योंकि ये
0: अच्छा
1: जो सब्जी है ये मन है तेज धूप ला सहन कर सकते हैं और हमारे शरीर ला हाइड्रेटेड रखते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: एक अलावा भाजी मन मिलते हैं हमारे, चौलाई आते हैं, पालक आते हैं, हमारी
0: हाँ
1: भाजी है, छेज भाजी है, खट्टा भाजी, ये सब आते हैं अभी।
0: अच्छा। जैसे कि बात करिए अभी गर्मी के टाइम में रमकेरिया आने भिंडी के अगर खेती अबड़े होते भाव अच्छा मिलते तो एमा कौन कौन
1: जी
0: से कीड़वा ज्यादा आते, एक नियंत्रण कैसे करे जाए।
1: जी भिंडी में हमारे मुख्य रूप से सफेद मक्खी और फल बेधक कीट के आक्रमण ज्यादा होते हैं वहाँ।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: भिंडी में सबसे ज्यादा सफेद मक्खी के आक्रमण से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत अवस्था से ही यह सफेद मक्खी है लग जाते हैं हमारे भिंडी में। तो जब सफेद मक्खी के आक्रमण होते तो पत्ती मन है सिकुड़ जाते हैं,
0: अच्छा
1: जेका से हमारे पौधा के बढ़वार है रुक जाते हैं, और जैसे प्रभावित जो पौधा है वह में फल जो आकार है उसका तिरछा हो जाते हैं। भिंडी में मोजेक रोग लग जाते, पीला पीला हो जाते पत्ती मन है, और फल मन हलो कभी कभी सेटरा ऐसा दिखेल धर लेते। तो हमारे जो है फिर भी प्रभावित जो पौधा है वह फल कम संख्या में लगते और
0: अच्छा
1: उपज भी बहुत ज्यादा मतलब मार खा जाता। तो एला नियंत्रित करे बर हमन है कीटनाशक दवाई डालते निमा, जैसे
0: अच्छा
1: क्योंकि ये सफेद मक्खी है ये का है वायरस बीमारी ला फैलाते, बीमारी फैले के कारण हमारे जो पौधे हैं एकदम बढ़वार होकर रुक जाते। तो जो का है कि वायरस के जो है साधन वो कीड़ा ही जो रहते सफेद मक्खी ही फैला काम करते। तो हम सफेद मक्खी के नियंत्रण करते हैं
0: अच्छा
1: ओकर बाद हम स्टिकी ट्रैप लगाते हैं 10 से 12 प्रति एकड़ के दर से। मका होते चे पीला रंग के रहते हैं तो आकर्षित होकर मन आते सफेद मक्खी मन उमा चिपक जाते और मर जाते हैं।
0: अच्छा
1: दूसरा
0: अच्छा
1: हमन है इमिडाक्लोप्रिड दवाई है 70.8% एससी वाले, बोला 5 ml प्रति स्प्रेयर के दर से छिड़काव करके भी नियंत्रित कर सकत है।
0: हाँ, फर के अंदर में कीड़वा घलो घुसे रह रहते, कई ठीक नुकसान करते, एक टोरिया तो देखिया ये हर का है,
1: जी
0: एला
1: जी
0: बतावा ना।
1: हाँ, ये जो फल के अंदर में जो कीड़ा रहते हैं ना एला हमन है फल बेधक कीट के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या होते कि बहुत ज्यादा नुकसान करते, छोटे से छेद बना के हमारे फल के अंदर में घुस जाते भिंडी के अंदर और अंदर अंदर ओला खावत रही थे। आप मन देखो बाहर से तो सिर्फ छोटे से छेद नजर आते, अंदर काटो तो पूरा इल्ली आप अंदर में दिखाई देते। तो ओहूला हमला नियंत्रित करना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा
1: एखर नियंत्रण में हमारे इंडोक्सा कार भी दवाई है 14.5% एससी वाले ला 400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकत हैं,
0: अच्छा
1: या
0: अच्छा
1: फिर स्पाइनोसेट दवाई है 45% एससी वाले, ओला 150 ml प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़क सकते हैं। बताए हुए स्पाइनोसेड है इंडोक्सा कार, क्योंकि
0: अच्छा
1: सब्जी वाले किसान ला तो हर 2-4 दिन में तोड़ाई करना है, ज्यादा लंबा उम्र है नहीं रुक सके, ताकि हमारे मनुष्य के जो स्वास्थ्य है ओला कम से कम नुकसान हो।
0: अब हमला बताहा कद्दू और भी सब्जी में कौन कौन आते और एकर का एमा कीट है, एक नियंत्रण कैसे करे जाए।
1: हमारे जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी है तो मुख्य रूप से हमारे नार वाले सब्जी बनाते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तोरई है, करेला, परवल, लौकी और कद्दू जो मखना के थन हमन है, ये सब सब्जी हमारे कद्दू वर्गीय सब्जी में आते हैं।
0: अच्छा, का कीट आते हैं, अतका कन तो बताए हैं अपन।
1: जी, ये कद्दू वर्गीय जो सभी प्रकार के हैं उनमें लगभग ये मुख्य रूप से सफेद मक्खी और फली बेधक कीट के मुख्य रूप से आक्रमण होते हैं।
0: अच्छा बताओ ना।
1: एक नियंत्रण भी जैसे मैं भिंडी में बताया हूँ सफेद मक्खी और फल बेधक कीट के रोकथाम पर, तो वही दवाई ला हमारे इहू में डाल सकते हैं।
0: अच्छा बढ़िया बात बताओ था। फल माछी घलो हो जाते, फल माछी कैसन दिखते, किसान संगवारी मन
1: जी
0: कैसे पहचान कराए, एक नियंत्रण कैसे करें, वो का नुकसानी होते।
1: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो बैसाखू भैया आप मन है। जैसे जो फल मक्खी होते ना तो हमारे जो घरेलू मक्खी रही थे ना वैसे दिखते है मक्खी है,
0: अच्छा
1: लेकिन जो
0: अच्छा
1: एकर आकार है ना जो घरेलू मक्खी है उसके से थोड़े से बड़े रहते हैं। आप मन देखे हो फल दुकान में या गन्ना रस के दुकान में देखे हो बड़े बड़े माछी
0: हाँ, बड़का बड़का दिखते हैं।
1: है ना, बड़का बड़का माछी नहीं रहते, बड़े बड़े आंखी वाले रहते हैं मन है। तो हमारे घरेलू मक्खी से दुगुना का लगभग ही मन है।
0: अच्छा,
1: तो हमारे किसान भाई मन

0: आसानी से देख के पहचान सकते हैं, वही है हमारे फल मक्खी हरे। और
1: अच्छा
0: ये हमारे बहुत नुकसान करते, ये क्या करते कि जैसे हमारे फल में है ना छोटे से वो डंक चुभा अंडा देते फल के ऊपर जो फल मक्खी है, तो ओकर अंडा जब टूटते ओकर से इल्ली निकलते तो वो इल्ली है फल के अंदर में घुस घुस के पूरा गुदाला खावत रही थे वहां।
1: ओहो
0: ओकर बाद का होते वो सड़न रोग पैदा हो जाते, पहले पूरा हमारे फल है रखा रखा सड़ जाते।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा
1: वाह
0: नियंत्रण जो इधर है इधर पॉइजन बेड बनाते हैं हमारे, पॉइजन मतलब कि जहर ला पॉइजन बोलते हैं हमें ना, तो में का होते कीटनाशक के साथ में गुड़ या शक्कर ला मिला के घोल देते हैं हम। ओकर बाद छोटी में एक तो मटकी में या फिर बोतल में भर के टांग देते हैं पौधा में, जैसा से का होते फल मक्खी मन गुड़ या शक्कर है जो सुगंध मीठा मीठा माछी मन ला आकर्षित करते, तो मन है उड़ के वहां पे आते और वहां पे गिर के मन है नष्ट हो जाते,
1: अच्छा
0: जेकर
1: अच्छा
0: से फिर अंडा नहीं बन पावे, क्योंकि तो
1: अच्छा
0: मक्खी मन लगा है मीठा बहुत पसंद रही थी, तो मन मीठा पर आकर्षित होके आते उमा तहले
1: अच्छा
0: खत्म हो
1: अच्छा
0: जाते।
1: अच्छा जैसे बीटल घलव होते, बीटल ला आओ का कही थे, ये ला बतावा ना कौन प्रकार के नुकसानी करते।
0: अच्छा ये जो बीटल होते लाल पीला रंग के दिखाई देते, आप मन देखो लौकी कद्दू के जो पत्ती मन है गोल गोल छेदा सब हो जा रही थी है ना, तो हमने बीटल ही के थे ला भृंग बोलते हैं
1: अच्छा भृंग।
0: हिंदी
1: हाँ
0: भाषा में, हाँ भृंग भी बोलते हैं ला हमें, तो यह लाल पीला रंग के थे और खैर निशानी ये है कि पत्ती मन में गोल गोल धब्बे वो बन जाते छेदा छेदा सर, तो
1: अच्छा अच्छा
0: मन
1: हाँ
0: जान डालते कि हम बीटल के आक्रमण हुए हैं।
1: अच्छा तो एक रोकथाम कैसे करे जाए बताओ ना।
0: अच्छा एक रोकथाम बन हमन है डाइमेथोइड दवाई है 30 cc वाला, ओला 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके भी नियंत्रित कर सकते हैं, या
1: अच्छा
0: हमन एसीफेट दवाई कोई भी जो सिस्टेमिक दवाई वाला उपयोग कर सकते हैं, वह एसीफेट भी आते तो एसीफेट दवाई है 75% SP वाले, ओला 730 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसके
1: अच्छा
0: अलावा हम जैविक तरीका से जैसे मेटाराइजियम के भी उपयोग कर सकते हैं कि नियंत्रण हो जाते हैं।
1: अभी सबले बड़का देखी कि जिन फसल है भाटा आवत है पताल घलो है कतको के संगवारी मन के पताल मिंजर गए है, इहू में अबड़े नुकसानी करते किरुआ हर, तो का
0: जी
1: किरुआ में होते कैसे का नियंत्रण करे जाएला बतावा।
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है भैया, क्योंकि हमारे मुख्य रूप से हमारे जो आबादी है आधा ज्यादा भाटा और टमाटर ऊपर डिपेंड रही था,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ हाँ
0: दोनों के बिना हमारे सब्जी नहीं हो है ना, भाटा और टमाटर तो जरूरी छे घर में, हर घर में भाटा खाए जाते टमाटर खाए जाते, तो हमारे किसान भाई मन बहुत जरूरी है यार, लेकिन बहुत उपयोगी वे सब्जी मन है। तो भाटा और टमाटर में मुख्य रूप से फल बेधक कीट के प्रकोप है देखे गए है।
1: अच्छा अच्छा हाँ फल भेदक कीट होते तो
0: हाँ
1: एकर
0: हाँ
1: पहचान कैसे करे, कुछ विशेष दिखते का ये हर, कैसे नियंत्रण करे जाए बताओ ना
0: इसका
1: किसान
0: जो
1: भाई।
0: नियंत्रण है ये जो कीट है ना धब्बेदार, जैसे आप मन चना के इल्ली देखे हो है ना,
1: हाँ
0: चना के इल्ली है राहेर में इल्ली रही थे, तो दो तीन प्रकार की इल्ली रही थे, एक तो हरा रंग के आते एक तो भूरा रंग के आते बिंदी बिंदी वाला, तो यही जो इल्ली मन है ये मन है टमाटर और भाटा में अंदर में छेद करके वाला नुकसान पहुंचाते,
1: अच्छा
0: अंदर
1: अच्छा
0: अंदर खाते थे मन है मुंडी ला अंदर घुसा के पूरा फिर पूरा शरीर अंदर घुसा लेते।
1: अच्छा तो बहुत नुकसानी हो जाते कहा था।
0: हाँ बहुत नुकसानी हो जाते,
1: तो
0: कभी कभी तो एक फल में आप काट के देखो तो दो दो ठो नीली भी दिखाई देते।
1: तो एक नियंत्रण कैसे करना चाहिए, रासायनिक विधि ले जैविक विधि ले दोनों ले बता दे ना।
0: जी एक है जो नियंत्रण है सबसे पहले हम जैविक विधि में आते हैं, तो मैं एक HANPV करके एक वायरस के वो आते
1: अच्छा
0: दवाई आते, तो बोला 250 ml 28, 32, 42 दिन के अंतराल पर हमला छिड़काव करना चाहिए, जेकर से क्या होते कि ये इल्ली मन है पर मतलब वायरस से पूरा संक्रमित हो जाते, वायरस से खैर पूरा शरीर में शरीर ढक देते और वायरस के कारण मर जाते मन, तो यह हमारे बहुत अच्छा दवाई है जो HANPV वाले है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा हम फेरोमोन ट्रैप के भी उपयोग कर सकते हैं, एला 25 ठोक प्रति हेक्टेयर लगा देंगे, तो मैं जो नर के अमन है फंसते ताले मर जाते हैं मन है।
1: अच्छा
0: इसके अलावा हम रासायनिक दवाई से भी ओला उपयोग नियंत्रित कर सकते हैं,
1: हाँ
0: जैसे कि मैं पहली भी बताएं विंडोक्सा कार्बे दवाई है 14.5% SC वाला, 400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से हम डाल सकते हैं, या हमारे आजकल क्लोरएंटीनिप्रोल आते हैं कोराजन के नाम से आते बाजार में,
1: हाँ
0: ये भी बहुत अच्छा दवाई है, 18.5% SC ला 60 ml प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करे से नियंत्रित किया जा सकते।
1: अच्छा। तो कतका बढ़िया बात बताया है, ग्रीष्मकालीन सब्जी में समन्वित कीट नियंत्रण के बारे में। आप मन की
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।
0: जय जोहार बैसाखू भैया, आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन मोर से जानकारी बरमूला आमंत्रित करे हो।
1: संगवारी हो, अभी हम सुनत रहें ग्रीष्मकालीन सब्जी में
2: समित कीट प्रबंधन हमन कोन प्रकार से करी। एमन हवाए डॉक्टर एकता ताम्रकार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। अब इनका का गोड़ बात करती से हमारे संगवारी हरी।

माड़वा मन संगवारी हो कार्यक्रम संबंधित अपन बर एक सूचना हुए प्रत्येक बृहस्पति और शुक्रवार के संध्याकन 7:30 ले 8 बजे बीच में फोन इन कार्यक्रम प्रसारित कर जाते हैं जेमा किसान भाई मन बर कृषि उत्पादन पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और स्वास्थ्य संबंधित समस्या के समाधान पाए बर हमन विशेषज्ञ के रूप में पूर्णिमा ला बुलाथन जेमा अपन फोन करके समाधान पा सकत है। यही कड़ी के बृहस्पत 14 मई 2026 के स्टूडियो में पहुना आही विषय वस्तु विशेषज्ञ बिलासपुर के डॉक्टर अमित शुक्ला जी मन अपन 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सवाल पूछ सका था। तो पहली बेरा के जो विषय हवा फलो ज्ञान की स्थापना और फूल के उत्पादन तकनीक जो दूसरिया बेरा हवा 11 से 11:30 बजे के बीच में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन तकनीक ये विषय के समस्या के समाधान और जिज्ञासा के समाधान पाए बार अपन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर के माध्यम से फोन करके समाधान पा सकता था। हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के फोन नंबर है 266-592। संगवारी को फोन लगा के पहले अपन बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाया झन बुला बिलासपुर के एसटीडी कोड है 07752। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और प्रसारण 14 मई 2026 और 15 मई 2026 संध्याकन 7:30 ले 8 बजे बीच में अपन सुन सकते हैं। बढ़तन कार्यक्रम के आगू कथी किसान भाइयों अभी बेरा हमारे कथे किसान भाई मन आनी बनी के खेती किसानी करते और दोहराल दोहरा आमदनी कमाते ऐसे बेरा में गर्मी बढ़ाते हुए तो खास करके हमन अपन सेहत के ख्याल रखना चाहिए। समय रात हमारे खान पान और सेहत के साथ साथ अपन जो खेती किसानी के बुद्ध काम करना चाहिए। खेती से जुड़े संगवारी अपन आवा गीत सुनत हन जो गीत लगा है कांति साहू और चतुर साहू मन।

संगवारी हो गीत लगाते सावे कांति साहू मन बढ़थन कार्यक्रम के आगू कथी और आज के बिलासपुर के अधिकतम तापमान बता देतन। बिलासपुर के अधिकतम तापमान सावे 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रिसे संगवारी हो 27 डिग्री सेल्सियस। बात करी खेती किसानी के तो अभी बेरा के संगवारी हो हमर कते किसान भाई मन मूंग के खेती करे हवे तो लगभग पके के कगार मांगे हैं। जैसे जैसे मौसम बदलत हवे संगवारी हो वैसे हमन अपन जो विशेषज्ञ उगर कर हमन सलाह ले सकतन काबर की अवैया पानी कांजी में कई प्रकार के रोग व्याधि या कहीं तो फल ज़्यादा ज़्यादा नुकसान होने के संभावना रहते हैं। तो ऐसे बेरा में हमन विशेष करके जो विशेषज्ञ है कृषि विस्तार अधिकारी उगर कर हमन सलाह ले सकथन कि का कीट व्याधि हमन कर सकथन। एक संगे संग बात करो संगवारी हो तो हमन अभी बेरा हमारे कथे किसान भाई मन पशुपालन घलो करते हैं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़त हवा वैसे वैसे हमन जो घर में गाय गरु रखे हवन छोटे दुधारू बछरू हवा उनका हमन जतन हमन विशेष करके हमला करना चाहिए। साथ ही साथ हमला पानी ले बचाए पर हमला विशेष करके गर्मी ले बचाए पर हमला विशेष करके उनका बार हमला पानी की व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही साथ हमला जो उनका जो कोठा हवा कोठा में हमला देखभाल करना चाहिए कि कोनो प्रकार के वहाँ गर्मी झन आए कहीं तो जूट बोरा है ओला हमला व्यवस्थित कर देना चाहिए। और जैसे हम कुकरी पालन करते हैं तो कुकरी पालन भी हमन विशेष करके गर्मी ले बचाए पर हम उचित व्यवस्था करें ताकि कोनो प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा कुकरी ला नुकसान झन हुए। देखा गोड़ बात करत करत वेरा तो आवे अपन के ग्राम सभा ले विदा लेके यही कार्यक्रम संग पंचो भीर देव विदा। जय जोहार राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। इसमें आज के कलाकार हैं जावेद बशीर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस समय हमारे केंद्र आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं जावेद बशीर।

ये थी सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आज के कलाकार थे जावेद बशीर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम रजनीगंधा का। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रत्ना का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता जिन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। अभिनेता, खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सदाशिव अमरापुरकर को 11 मई 1950 को अहमदनगर महाराष्ट्र में जन्मे सदाशिव अमरापुरकर ने हिंदी, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने सन 1987 में अनिल शर्मा की पहली सफल फिल्म हुकूमत में धर्मेंद्र के साथ नकारात्मक भूमिका निभाई थी। बातें हम और भी करेंगे, पहले सुनते हैं फिल्म सड़क का ये गीत।

फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया था सन 1993 में। उन्हें खलनायक की भूमिका के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। सन 1993 में ही अमरा पुरकर ने फिल्म आंखें में इंस्पेक्टर प्यारे मोहन का हास्य नायक का किरदार भी निभाया। नकारात्मक भूमिकाओं के अलावा उन्होंने सहायक भूमिकाएं और बाद में हास्य भूमिकाएं भी बखूबी निभाई। आइए अब सुनते हैं फिल्म आंखें का ये गीत।

सदाशिव अमरापुरकर ने अपने स्कूली दिनों में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। पुणे विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के दौरान वे रंगमंच से जुड़े रहे।

सदाशिव अमरापुरकर ने मराठी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। लगभग 50 नाटकों में अभिनय और निर्देशन का कार्य किया, फिर फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की भूमिका के साथ फिल्म जगत में पदार्पण किया, जो जयू पटवर्धन और नचिकेत पटवर्धन द्वारा निर्देशित एक मराठी ऐतिहासिक फिल्म थी।

सदाशिव अमरापुरकर ने रंगमंच और फिल्म जगत में कई पुरस्कार जीते। उनकी पहली हिंदी फिल्म गोविंद निलहानी की अर्धसत्य थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। सन 1981-82 में सदाशिव अमरापुरकर ने मराठी नाटक हैंड्सअप में अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे इनामदार के साथ अभिनय किया। यह नाटक सफल रहा और निर्देशक गोविंद निहलानी की नजर सदाशिव अमरापुरकर पर पड़ी, जो अपनी फिल्म अर्ध सत्य के लिए मुख्य खलनायक की तलाश में थे। फिल्म हिट साबित हुई और अमरापुरकर की अभिनय की खूब सराहना हुई। फिल्म अर्धसत्य के बाद सदाशिव अमरापुरकर ने पुराना मंदिर, नसूर, मुद्दत, जवानी, खामोश में भी अभिनय किया। इसके अलावा वे आखिरी रास्ता, हुकूमत, खतरों के खिलाड़ी, नाकाबंदी, बेगुनाह में खलनायक के रूप में भी नजर आए। सन 1990 के दशक के मध्य सदाशिव ने आंखें, इश्क, कुली नंबर वन, गुप्त, आंटी नंबर वन जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं और हास्य भूमिकाओं की ओर भी अपना रुख किया। इसके अलावा उन्होंने समाज सेवक के रूप में भी कार्य किए।

फिल्म कच्चे धागे के इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से रत्ना को दीजिए अनुमति। आज हम याद कर रहे थे हिंदी और मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता, खलनायक और चरित्र अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।

0: और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने

भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स

0: 76,015 पर बंद हुआ, निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimum

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कॉम्पिटिशन थी। और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे। तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्न विकाई चेत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निहलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निहलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया।

इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था, और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है, किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी।

0: तू
1: फिर जोर से हाँ बोलना शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेला ही है सब।
3: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
4: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिक्कू पै आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए। ओ,
5: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
6: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
6: हाँ।
1: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था, उदित करके सारे जवाब के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडू पांडो।
5: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्यों मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा।
3: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

ये जाए। कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है। आगे

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है। कोई

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

खिल उठी हैं रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय रात के 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत

और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।